हमन से भजलो रे हरी तन से भजलो रे हरी राम नाम है जग में।

उठा सा टुका नारद देखे करम की रेखा सा तो मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी राम नाम है जग में।

भजन करो हरि जगत करतार, भजन करो हरि जगत।

करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत जगतारे भजन करो।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम आजीविका में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, आप जानते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं इस बारे में हम कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताते हैं। कहा जाता है दोस्तों, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है और पद चिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। हाँ दोस्तों, ये कहावत जो कही जाती है, सुनी जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। छोटी छोटी कहावतों से कहा जाता है कि हम जब किसी के पद चिन्हों पर चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन से हम चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन द्वारा हम चलते हैं, तो हम आगे चलकर एक सफल उद्यमी माने जाते हैं। जो कि हमने कार्यक्रमों में पहले भी बताया था कि उद्यमिता क्या है, उद्यमिता होने के

0: क्या महत्व है आज के साथ ही हमारे कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे सफल उद्यमी के क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे उनको व्यवसाय लगाने चाहिए जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सकी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आपको ले चलते हैं हितेश धाकड़ जी के पास, जो उप निदेशक है हमारे औद्योगिक विभाग से, और साथ में कुछ हमारे विषय विशेषज्ञ हैं जो उद्योग को लेकर काफी अच्छी उनको पकड़ है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिससे हमारे युवा साथी अपने कार्य में सफल बने, आगे चलकर सफल उद्यमी कहलाए। तो आइए हम आपको हितेश धाकड़ जी के पास ले चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि हमारे युवा साथी किस तरीके से सफल उद्यमी बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। एक सफल उद्यमी जैसे हमारा साथी बनना चाहता है तो उसके लिए क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए?
1: एक सफल उद्यमी की पहली विशेषता होती है अनुभव।
0: जी,
1: अनुभव और उसका ज्ञान होना। आप जिस भी उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं या जिस भी व्यवसाय की आप स्थापना करना चाहते हैं उसको आपको बारीकी से ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप अगर हमारे युवा किसी उद्यम की स्थापना और अग्रेसित होना चाह रहे हैं या आकर्षित हैं तो उन्हें पहले ये निश्चित करके कि आप करना क्या चाहते हैं और आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र विशेष में जहां आप उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं वहां क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है।
0: जी जी,
1: क्योंकि देखिए मार्केटिंग भी बहुत बड़ा इशू आता है।
0: बिल्कुल,
1: केवल उद्यम लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, मार्केटिंग स्किल भी होनी चाहिए।
0: जी,
1: तो सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि पहले तो मार्केट स्टडी करें, जिस चीज की आवश्यकता यहाँ पे है
0: जी,
1: किस चीज की उपलब्धता यहाँ पर है
0: जी,
1: और जो हम उद्यम चलाने वाले हैं उसकी मार्केटिंग हम किस तरीके से लोकल में या बाहर के क्षेत्र में कर पाएंगे।
0: जी,
1: तो उससे उसको उद्यम लगाने से पहले हमारे युवाओं को थोड़ा सा बेसिक जानकारी उस चीज की होनी चाहिए।
0: जी जी जी।
1: अब बात आती है फाइनेंस की, क्योंकि वित्त पोषण भी एक समस्या रहती है उद्यमों के विकास के लिए।
0: जी,
1: तो काफी विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, मध्य प्रदेश शासन की भी योजनाएं हैं, केंद्र शासन की भी योजना, उनके अंतर्गत हम वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करा।
0: जी जी। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि व्यवसाय तो ठीक है लोग लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए, बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति को जाना जाए, तो क्या यहाँ पर कौन कौन से ऐसे व्यवसाय संभव है जो कि आसानी से लोग कर सकते?
1: देखिए अगर ओरछा या फिर निवाड़ी जिले या बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहाँ पे कई सारी संभावनाएं
0: हैं।
1: रिसोर्सेस हमारे पास प्रकृति की देन, प्रकृति की कृपा से हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज।
0: जी,
1: तो एक तो मिनरल्स के क्षेत्र में काफी कुछ किया जा सकता है।
0: जी,
1: हालांकि निवाड़ी के ओरछा तहसील में काफी सारी इकाइयां खनिज की लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त आता है आपका जो बढ़ती हुई जो आवश्यकताएं हैं, आप जो वुवन बैग्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कल 2 अक्टूबर के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें खात्मा करना है।
0: जी जी जी,
1: रहना है। तो फलस्वरूप एक उसकी वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता बढ़ेगी।
0: जी जी,
1: पॉलिथिन का वैकल्पिक क्या हो सकता है? तो हम जूट के थैले, वुवन बैग, वो क्या डिग्रेडेबल रहते हैं, जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उसकी इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं।
0: जी,
1: इसके अतिरिक्त छोटे उद्यमों की भी स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि सोना पत्तल हुआ।
0: जी,
1: क्लाइट ब्रिक्स हुआ।
0: जी जी जी,
1: सीमेंट उद्योग हुआ।
0: जी,
1: क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर और जो बाकी प्राकृतिक पत्ते इनकी भरपूर उपलब्धता है, तो सीमेंट और पेवर्स क्लॉथ वगैरह की काफी संभावना इस क्षेत्र में है।
0: जी जी जी। और यहाँ पर सर उद्योग स्थापित कर तो लेते हैं, लेकिन वही समस्या यहाँ पर आती है लोगों को कि उनको ट्रेनिंग्स की आवश्यकता रहती है, तो क्या सरकार की ओर से ऐसी कोई ट्रेनिंग्स लोगों को दिलाई जाने की बात की जा रही है या फिर ट्रेनिंग्स दिलाते भी हैं यहाँ पर?
1: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं अपने युवाओं को बताना चाहूंगा कि हर जिले में एक RCT की स्थापना की गई है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। या उस जिले की अग्रणी बैंक द्वारा संचालित किया जाता है, हमारे टीकमगढ़ जिले में SBI द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को ट्रेनिंग देना, उद्यमिता से जुड़ी हुई ट्रेनिंग देना।
0: जी
1: हमारे इच्छुक युवा, हमारे इच्छुक भाई बहन जो भी उद्यमिता संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वो एक आवेदन RKT टीकमगढ़ में कर सकते हैं, तथा उनको अगले बैच में जब उनका जो ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी तो उन्हें सूचना देके उनको बुला लिया जाएगा। तो ये हर ट्रेड वाइज, हर उद्यम वाइज ट्रेनिंग रहती है, जिसके दिन अलग अलग रहते हैं। तो जो भी युवा इच्छुक है उनको हम ट्रेनिंग शासन की तरफ से मुहैया कराते।
0: सर कितने दिन की इसमें ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं?
1: ये ट्रेड के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि किसी को 15 दिन की ट्रेड रहती है तो उसका 15 दिन का रहता है, 20 दिन का रहता है, किसी का 1 महीने का रहता है, किसी का 5 दिन का भी रहता है। तो ट्रेड के ऊपर निर्भर रहता है
0: जी
1: आपको कितने दिन की ट्रेनिंग दी
0: है। सर प्रशिक्षण के बाद यदि उसको प्रमाण पत्र मिलता है तो क्या बैंकों में उसकी, जैसे हम सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ उस प्रशिक्षण वाले प्रमाण पत्र को, तो उसमें कुछ सहूलियत होती है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो प्लस पॉइंट हमेशा आवेदक को मिलता है। वो ये जब वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो वो यह दर्शाता है कि उसके पास एक अन्य लोगों से विशिष्ट उपलब्धि है, उसको उस क्षेत्र का ज्ञान है, उस क्षेत्र का जो भी अनुभव है वो ट्रेनिंग में उसने लिया गया है।
0: जी।
1: तो मेरे अनुसार बैंक उसको अधिक कंसीडर करती है, उस पर अधिक विचार करती है और उसको जरूरी लाभ मिलता है।
0: जी अभी वर्तमान में सर उद्योग विभाग की ओर से कौन कौन योजना संचालित की जा रही है?
1: जी वर्तमान समय में उद्योग विभाग में 4 योजनाएं संचालित की जा रही है रोजगार मूलक, जिसमें 3 मध्य प्रदेश शासन की योजना है और 1 केंद्र शासन की योजना है।
0: जी
1: सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है।
0: जी
1: हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना,
0: जी
1: युवा उद्यम योजना,
0: जी
1: और किसान पुत्र पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यम योजना संचालित है।
0: जी
1: मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात की जाए तो उसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण सेवा उद्योग तथा व्यवसाय तीनों श्रेणी के लिए लिया जा सकता है।
0: जी जी जी
1: जबकि युवा उद्यमी की बात की जाए तो ये 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की योजना है, इसमें केवल सेवा और उद्योग की इकाइयों के लिए ही ऋण लिया जा सकता है,
0: जी जी
1: व्यवसाय शामिल नहीं है।
0: जी
1: और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक है, इसमें सेवा व्यवसाय तथा उद्योग तीनों प्रकार की इकाइयां स्थापित की जा सकती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा केंद्र सरकार की सर कौन सी योजना?
1: एक केंद्र सरकार की योजना भी हमारे यहाँ संचालित है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
0: सृजन कार्यक्रम
1: ये योजना 50,000 से लेकर 25 लाख तक है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी और इसमें सेवा तथा उद्योग की इकाइयों को ही कई स्थापना की जा सकती है, इसमें व्यवसाय आपात श्रेणी में है।
0: चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे युवा साथियों को एक मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि उद्यमता के क्षेत्र में लोग अपने एक तरीके से विचार कर रहे हैं कि अब क्योंकि नौकरियां बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं और बहुत ही कम रोजगार हो गए हैं, तो लोग अब उद्यमता की ओर रुख कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमारे युवा साथियों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

अपना रेडियो अपनी बातें एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, हमारे हितेश धाकड़ जी ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे युवा साथियों को दी कि किस तरीके से हमारे युवा साथी एक सफल उद्यमी बनने के लिए उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या उनको कार्य करने चाहिए जिससे वो सफल हों, अपने जीवन में सफल हों, अपने व्यवसाय में सफल हों। साथियों, आप जानते हैं कि क्या बातें हैं सबसे जरूरी कार्य में आनंद करने के लिए, ये एक गुण होता है जो आपको एक सफल उद्यमी बना सकता है। दूसरा कि गंभीरता, आप तब तक अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका उसमें अटूट विश्वास ना हो। ये एक दूसरा गुण होता है जो आपको सफल उद्यमी बनाने में मदद करता है। तीसरा साथियों, आत्मविश्वास की कमी, जो कि हितेश जी ने बताया था कि आत्मविश्वास आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास किसी भी नए उद्यमी के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। चौथा साथियों, योजना आपको बनानी चाहिए कि हमें कौन सा व्यवसाय लगाना है, कैसे लगाना है। पूर्ण योजना के साथ यदि हम व्यवसाय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। अगली जो साथियों आपको सफल उद्यमी बनाने का गुण हम आपको बताते हैं, अगली जो गुण होना चाहिए हमारे युवा साथियों को जो सफल उद्यमी बनने के लिए, वो होना चाहिए खतरे उठाने वाला होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोखिम आएंगे आपको यदि आप उद्यम डालते हैं तो। आपको सबसे पहले मार्केट बनाना होता है और इसके बाद मार्केट के साथ साथ बहुत सारी समस्या जो रहती है वो सामने आती है, तो ऐसे में खतरे उठाने वाला होना चाहिए, सब तभी एक सफल उद्यमी वो बन सकता है। विशेषज्ञता रखने वाला होना चाहिए, यानी हर विषय में उसको जानकारी होना चाहिए, संबंध जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसकी विशेषज्ञता आपके पास होना चाहिए, खुद में निवेश करने वाला होना चाहिए। यदि ये सारे गुण आपके अंदर हो तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। साथियों, कार्यक्रम में हम एक विराम लेते हैं, यानी लोकगीत के साथ मनोरंजन करते हैं। इसके बाद साथियों आपकी हमारी बातचीत होगी और आपको हम बिमल जी के पास ले चलते हैं, और बिमल जी चूंकि विषय विशेषज्ञ हैं उद्यमता को लेकर, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार हमारे युवा साथी यदि कोई व्यवसाय डालना चाहते हैं तो सफल बनने के लिए कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए, कैसे सफल हमारा व्यवसाय बन सकता है हमारा युवा साथी। तो आइए इस प्यारे से लोकगीत को हम सुन लेते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने हर प्रसाद कुशवाहा और उनकी साथियों में इस प्यारे से लोकगीत को सुना। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए उनकी बातचीत को हम सुनते हैं विमल जी के साथ।

0: ऐसे में हम क्या करें कि अपनी आय को बढ़ाएं, या एक रेगुलर आय हमारे पास में एक आती रहे जिससे कि हम करते, तो उसका ये कि हमें कृषि के अलावा भी अन्य वैकल्पिक साधनों को खोजने की जरूरत है।
1: जी जी।
0: तो हम अपने क्षेत्र में क्या चीज ऐसी करें, कुछ ऐसा कुछ छोटा सा उद्योग लगाएं जिसमें बहुत कम पूंजी में कुछ उद्योग लगा करके कुछ ऐसा काम करके हम जो है वो अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में किन चीजों की खपत है, उन खपत के अनुरूप ही हमको उद्यम लगाने की जो है वो आवश्यकता है। अगर हमारे यहाँ पर तेल तिलहन अधिक हो रहा है तो हम तेल का कुछ लगा लें, अगर हमारे यहाँ मसाले अधिक है तो मसाले की चीज लगा लें, तो कैसे हमारे लिए कोई आंवला जैसे हमारे यहाँ हो रहा है तो हम आंवले के अचार का लिए हम एक छोटा सा उद्यम लगा सकते हैं। कई प्रकार के उत्पाद जो है उसके भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, हमको बहुत छोटी सी कोई हम महीने भर की ट्रेनिंग या दो तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर के और किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक हम बना सकते हैं और छोटा छोटा उद्योग लगाएं, ये भी अगर हम प्रयास करें तो हम अपने आय के साधन में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं।
2: बिल्कुल। आप सर बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी।
0: धन्यवाद।

अपना रेडियो अपनी बातें, आप हैं इस वक्त आपके अपने रेडियो साथी मनीष के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम आजीविका को। और साथियों, अभी आपने बिमल जी से इतनी अच्छी जानकारी को जाना समझा, और हमें तो लगता है कि अब हमें स्वयं का व्यवसाय करने में कुछ देर नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास ये सारे गुण

तौर पर व्यवसाय से जुड़े पक्षों के अलावा कई ऐसे पक्ष भी जुड़े जाते हैं जिन्हें उसे काम शुरू करने से पहले और काम करते समय लगातार अभ्यास में लाना पड़ता है। क्या होती है एक सफल उद्यमी की विशेषता, आइए आपको हम थोड़ा और बता देते हैं, क्योंकि हमारे विषय विशेषज्ञ और साथ में उद्योग विभाग के उपनिरीक्षक ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। हमने भी आपको बीच बीच में बताया कि हमारे युवा साथी किस तरीके से एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। वह ग्राहकों को तैयार करता है और ग्राहक रोजगार और आर्थिक विकास को आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक उद्यमी की राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दरअसल विकास के एक पल्ले पर अगर रचनात्मकता और विचार, खोज और नवीनीकरण देखते हैं तो दूसरे पल्ले पर आर्थिक और व्यापारिक पक्ष नजर आता है। इन दोनों पर्णों को यदि हम अपनी अनोखी सोच से साधने वाले व्यक्ति ही एक सफल उद्यमी कहलाते हैं। कहा जाता है कि क्या सचमुच एक सफल उद्यमी पैदा नहीं होते हैं? इस सवाल के जवाब में यह कहा जाता है कि एक सफल उद्यमी में कुछ प्रतिशत जन्मजात प्रतिभा होती है और बाकी वह सीख सकता है। यह भी कहा जाता है कि उद्यमी एक घोड़े की तरह होता है जो नवीन विचारों की गाड़ी को खींचता है, और उसका मतलब एक सफल उद्यमी होने के लिए व्यक्ति में एक साथ कई गुण बहुत जरूरी रहते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं और अन्य वह काम और अनुभव के साथ साथ चमका सकता है। व्यवसाय विशेषज्ञों का यही कहना है कि सफल उद्यमी किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं और वह समाज के किसी भी घड़े में आ सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि उच्च शिक्षा उसको अंदर होनी चाहिए और उनके व्यक्तित्व के अलग अलग तरह के वो हो सकते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कई स्थानों पर उद्यमी के लिए उच्च शिक्षा ज्यादा काम आती है, लेकिन अपने काम को बुनियादी जानकारी जरूर काम आती है। जरूरी नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी के उद्यमी ही साबित हों। प्रथम श्रेणी से मतलब ऊंचा लक्ष्य रखने वाला और हर समय काम करता हुआ दिखने वाला श्रेणी के छात्री सफल उद्यमी साबित होते हैं, ये कहा जाता है। तो साथियों, आप भी एक सफल उद्यमी बनिएगा और अपने व्यवसाय को आगे ले जाइएगा। कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और आप अपने व्यवसाय की ओर मुड़िएगा। इसी के साथ साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। तो हमें आशा है कि कार्यक्रम सुनकर आपके मन में कई सारे सवाल और कई सारे विचार आ रहे होंगे, तो आप जरूर पूछिएगा। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, नंबर है हमारा 9219207749। व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें क्या जुड़ना चाहिए ये भी आप जुड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। यदि हमारे श्रोता साथी चिट्ठी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पता नोट कर लीजिएगा। पता है हमारा, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा। तो साथियों, अगले कार्यक्रम में किसी नए व्यवसाय, किसी नए सोच के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने रेडियो साथी मनीष को दीजिए जाने की इजाजत और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत आजीविका से जुड़ा। नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब,
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खास तौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
0: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करें, ये तो आप भूल ही गए थे मनीष जी।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आज। चूंकि हम मुझे कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें।

0: रहे, तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
0: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे, वो तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी और जिनके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी।
0: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके, ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटिव जो कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है
0: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा। और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी। और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के, उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
1: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1706 करोड़ रुपया अप्रूव किए गए हैं, उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इस पर भी, चूंकि खेती किसानी जुड़ी योजना है, इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष
1: और आपके रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, मुझे हक है।

0: रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ जो रूपए अप्रूव किए गए हैं, उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रूपए आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रूपए और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी हैं। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं, वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके, साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश के खेती वाले क्षेत्र के विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या हैं वो भी आप जान लीजिएगा।
0: श्रोताओं, सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों की सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
1: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का, उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। वाटर सेट परियोजना

0: योजना के माध्यम से मिल सकता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए? इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी, और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी FPO के सदस्य भी इसमें रहेंगे, और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो है वो इस प्रकार से हैं। आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन के जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
0: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए आधिकारिक पोर्टल स्थापित किया गया है। यहाँ पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार अपने अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं, और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा।
1: बिल्कुल साथियों, MIS रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको MIS रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी बाइफ OTF, वन टच फॉर्मेट, DIP डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC MI वर्क फ्लो सिस्टम, ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
0: तो ये सारे दस्तावेज हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर आपको नहीं लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनके पास जाकर पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आपने जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है, तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों, अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: हमारा नंबर है 9425141726।
0: तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

एपिसोड 10 दृश्य स्वच्छता स्वच्छ आंखें स्वच्छ जीवन। इस एपिसोड का उद्देश्य गांव में सफाई के महत्व को समझना है, जो हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। इस कार्यक्रम के मुख्य संदेश है गांव में साफ सफाई, पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त गांव, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति BWSC की भूमिका, सामुदायिक निगरानी और देखरेख, कचरा और प्लास्टिक का सही प्रबंधन, सरकारी समर्थन और सामुदायिक भागीदारी, पहले और बाद में पूछे गए सवाल। सवाल नंबर 1, क्या साफ सफाई सिर्फ

घर की होनी चाहिए या बाहर भी जरूरी है, हाँ या नहीं? सवाल नंबर दूसरा, क्या हमें खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर तीसरा, क्या स्कूल, तालाब और बस स्टॉप जैसी जगहों पर भी साफ सुथरी होनी चाहिए, हाँ या नहीं?

0: नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा और मेरे साथ है जोश से भरपूर मेरे सहहोस्ट आरजे
1: माता दीन।
0: दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा सा खास है। हम सिर्फ उस सफाई की बात नहीं कर रहे जो हमारी आंखें देखती हैं, बल्कि उस हवा की भी जिसे हम रोज सांस लेते हैं और उस माहौल की जो हमारी जिंदगी का सीधा प्रभावित करता है। और हाँ, आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ।
1: बढ़िया, चलो सुनाओ।
0: मेरे दोस्त की मेघालय यात्रा कमाल की रही। वो एक छोटे गांव की इतनी तारीफ कर रहा था कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, मैं तो बस देखते ही रह गई। फिर मैंने खुद इंटरनेट पर खोजबीन की और सच में वो बढ़ चढ़कर नहीं बोल रहा था।
1: तुम तो सस्पेंस बढ़ा रही हो, अब ज्यादा घुमा फिरा कर मत बोलो। जल्दी बताओ कि आखिर ये कौन सा गांव है और यहाँ क्या खास है।
0: अच्छा सुनो, इस गांव का नाम मावलीन

0: नोंग्स है। ये मेघालय में है और इसे एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है। यहाँ सफाई कोई मजबूरी नहीं बल्कि लोगों की आदत में शामिल है। ये गांव पूरी तरह प्लास्टिक फ्री है, मतलब यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है और अगर कहीं से प्लास्टिक आ भी जाए तो उसे फेंका नहीं जाता। लोग प्लास्टिक की पुरानी बोतल या टायर से गमला बनाकर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। गांव की गलियों में आपको बांस से बने डस्टबिन दिखेंगे। यहाँ स्थानीय चीजों का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। इस गांव की सबसे मजेदार बात है कि यहाँ सभी आदमी और बच्चे रोज अपने आसपास की सफाई करते हैं। टेसल की झाड़ू से बच्चे सड़कें साफ करते हैं। ये झाड़ू पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ हैं। इस प्रकार सफाई का काम सब मिलकर करते हैं। गांव के घर और बाकी इमारतें भी खास हैं। ज्यादातर बांस और पत्थर से बने हैं। इससे गांव खूबसूरत लगते हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और हाँ, यहाँ सभी घरों में शौचालय है, यानी कोई भी खुले में शौच नहीं जाता। मावलिन नोंग्स ने साबित कर दिया है कि जब लोग साथ मिलकर जिम्मेदारी निभाते हैं तो दूर दराज के गांव भी पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन जाता है।
1: लगता है तुम इस गांव की बात करना छोड़ नहीं पा रहे हो, और मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दे सकता। गांव की दिलचस्प बातें सुनकर मुझे भी वहां जाने का मन कर रहा है। जो कुछ भी तुमने बताया वो असल में उसी साफ सफाई की बात है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और यही तो आज के लिए एपिसोड का मुद्दा भी है।
0: दोस्तों, दिखने वाली सफाई का मतलब केवल अपने घरों को साफ रखना नहीं है, बल्कि पूरे गांव को साफ रखना है। जैसे बाजार, बस स्टॉप, गलियां, स्कूल, हेल्थ सेंटर, तालाब, कुआं, ये सब कूड़े कचरे और गंदे पानी से दूर रहें और अच्छी हालत में रखे जाएं।
1: बिल्कुल, गंदगी भरा माहौल सिर्फ देखने में खराब नहीं लगता, बल्कि ये मक्खियों और मच्छरों को बुलाकर बीमारियां फैलाता है। गंदगी हमारे पानी को गंदा करता है, वह हवा को खराब करता है, मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है और खाने की सफाई को भी प्रभावित करता है।
0: सोचिए, क्या आपको ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर अच्छा लगेगा जिसके चारों ओर प्लास्टिक और कचरा फैला हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो जगह साफ सुथरी और हरी भरी हो तो वहां बैठना सुकून भरा लगेगा। साफ माहौल सिर्फ अच्छा दिखता ही नहीं, बल्कि ये हमारे सेहत, पर्यावरण और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बेहतर होता है।
1: सोचिए, अगर गांव के मंदिर, मस्जिद, चर्च या पंचायत घर के आसपास कचरे का ढेर लगा हो तो क्या वहां जाना अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण के तहत सरकार गांव को ODI प्लस लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसका मतलब है सिर्फ खुले में शौच रोकना नहीं, बल्कि कचरे का सही प्रबंधन, गंदे पानी को साफ करना और पूरे गांव को स्वच्छ बनाए रखना भी है।
0: और हाँ, ODF प्लस का दर्जा हासिल करने के लिए गांव को सभी घरों में शौचालय का सही उपयोग सुनिश्चित करना होगा। साथ ही कम से कम 80% घरों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना सिर्फ उनके आसपास का इलाका बल्कि सभी सार्वजनिक जगह जैसे स्कूल, सामुदायिक केंद्र और तालाबों के आसपास कूड़ा या गंदा पानी जमा ना हो। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा ODF प्लस IEC मैनुअल के अनुसार
1: हर गांव की सफाई और प्रगति को जानने के लिए एक रेटिंग सिस्टम है जो बताता है कि गांव में कितना सुधार हुआ है। ये स्टार टियर प्रणाली के जरिए होता है। सबसे पहले आकांक्षी गांव की बात करते हैं। ये ODF यानी खुले में शौच मुक्त गांव है, जो कचरे या गंदे पानी के प्रबंधन की शुरुआत कर चुके हैं। फिर आते हैं उभरते गांव, जहां ठोस और तरल दोनों तरह के कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है, और आखिर में आदर्श गांव वे हैं जो ओडीएफ प्लस के सभी नियमों को पूरा करते हैं। यहां नियमित सफाई होती है और गांव वाले सफाई और जागरूकता फैलाने में सक्रिय रहते हैं।
0: वैसे ओडीएफ प्लस मॉडल गांव बनाना मुश्किल काम नहीं है, बस छोटे छोटे उचित कदम उठाने की जरूरत है। पहला कदम सभी घरों में शौचालय का इस्तेमाल करना है, ताकि कोई भी खुले में शौच ना करे। मतलब साफ सफाई ऐसी हो जो आंखों से दिखे, यानी घरों, स्कूलों या सड़कों पर कूड़ा या गंदा पानी नजर ना आए। गांव में सभी घरों से कचरा इकट्ठा होना चाहिए। जैविक कचरे से खाद बनाई जा सकती है। नहीं गलने वाले कचरे का सही तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। गंदे पानी को साफ करना जरूरी है, इसके लिए नालियां ठीक करनी होंगी, पानी सोखने वाले गड्ढे बनाने होंगे और साफ किए हुए पानी का दोबारा इस्तेमाल करना होगा। साथ ही लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक भी करना होगा। लोगों को ये समझना चाहिए कि सफाई सिर्फ सरकार का काम नहीं, सभी की जिम्मेदारी है। जब गांव वाले मिलकर काम करते हैं तो उनका गांव ODF प्लस मॉडल बनकर पूरे देश के लिए अच्छा उदाहरण बनता है।
1: गांव में सफाई और पानी से जुड़ी अच्छी आदतें लगातार बनी रहें, इसलिए मजबूत ग्राम जल और स्वच्छता समिति या VWSC का होना बहुत जरूरी है।
0: गांव में VWSC यानी ग्राम जल और स्वच्छता समिति बहुत जरूरी है। ये कोई बाहर की नहीं, आपके गांव की समिति है। इसमें आपके गांव के लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब है कि सफाई और बदलाव लाने की जिम्मेदारी और ताकत आपके गांव में है। VWSC समिति का काम गांव को साफ सुथरा बनाए रखना है। इसमें हर घर की भूमिका होती है। जब इस समिति के साथ मिलकर सभी लोग काम करते हैं तो एक साफ और सेहतमंद गांव बनना आसान हो जाता है।
1: बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि VWSC में कौन कौन लोग होते हैं। इस समिति के 5 सदस्य महिला प्रतिनिधि, आशा बहन और यहां तक कि स्कूल के टीचर भी होते हैं।
0: हाँ, और आप जानते हैं कि आपके गांव को साफ और सेहतमंद बनाए रखने में VWSC का अहम रोल होता है। मैं आपको इस समिति के काम के बारे में बताती हूँ। ये समिति गांव के लोगों को सफाई से जोड़ने की योजना बनाकर इसे हकीकत में बदलती है। साथ ही समिति ये ध्यान रखती है कि गांव में सफाई से जुड़े काम जिले की बड़ी योजना से मेल खाएं और गांव को साफ सुथरा बनाए रखने में मदद करें। VWSC सफाई के लिए मिलने वाले फंड को सही तरीके से खर्च करती है। पैसे का उपयोग खाद बनाने के गड्ढे, पानी सोखने वाले गड्ढे और कचरा निपटाने के आसान तरीके तैयार करने में किया जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। VWSC सिर्फ सफाई से जुड़ा ढांचा बनाने का काम नहीं करती, बल्कि पूरे गांव को जागरूक भी करती है। ये समिति खासतौर पर महिलाओं और युवाओं को सफाई और कचरा प्रबंधन की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों में सबको बुलाया जाता है, ताकि हर कोई ये समझ सके कि साफ सफाई सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है।
0: तो दोस्तों, अपने VWSC का समर्थन कीजिए। ये सच में लोगों के लिए बनी समिति है।
1: क्या तुम जानते हो कि सामुदायिक निगरानी, संचालन और रखरखाव गांव में सफाई बनाए रखने के लिए जरूरी है?
0: रुको रुको, सामुदायिक निगरानी, संचालन और रखरखाव से तुम्हारा क्या मतलब है?
1: मैं समझाता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक निगरानी का मतलब है कि गांव के लोग खुद सफाई की जिम्मेदारी लें। गांव के लोग निगरानी समितियां बनाते हैं और ध्यान रखते हैं कि शौचालयों का सही इस्तेमाल हो, कचरा ठीक से फेंका जाए और सार्वजनिक स्थान साफ रहें।
0: अब संचालन और रखरखाव के बारे में समझते हैं। इसका मतलब है कि सफाई से जुड़ी जरूरी चीजें जैसे शौचालय।

0: पानी सोखने वाले गड्ढे, खाद के गड्ढे और बायोगैस इकाइयां ठीक से चलती रहें और समय समय पर उसकी मरम्मत हो। BWSC इस काम में खास भूमिका निभाती है। ये समिति मरम्मत का इंतजाम, गड्ढे खाली करने की व्यवस्था और साफ सफाई के लिए जागरूकता फैलाने का काम करती है, ताकि गांव हमेशा स्वच्छ बना रहे।
1: अब समझ में आया कि गांव के लोग खुद सफाई पर नजर रखते हैं, साथ ही BWSC की मदद से सफाई से जुड़ी व्यवस्थाएं ठीक से चलती रहती हैं।
0: बिल्कुल सही। जब लोग सफाई की योजना बनाने और उसे लागू करने में शामिल होते हैं, तो वे इसे चलाए रखने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। कई गाँव में लोग बारी बारी से सार्वजनिक शौचालयों की सफाई करते हैं और जल निकासी दूर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इससे पता चलता है कि जब लोग मिलकर जिम्मेदारी लेते हैं, तो गांव में बड़ा बदलाव आता है।
1: हाँ, लोगों को सफाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जमा हुआ पानी को हटाना जरूरी है, ताकि मच्छर ना पनपे। खास तौर पर घर के बाहर और पुराने टायरों में पानी जमा ना हो, क्योंकि वहाँ मच्छर तेजी से बढ़ते हैं। नहाने या कपड़े धोने से निकला पानी भी खुली नालियों में जाने की जगह सूखने वाले गड्ढों में जाना चाहिए, ताकि गंदगी और बीमारियां ना फैलें।
0: गांव में सार्वजनिक जगहों को साफ सुथरा रखने के लिए स्कूल, अस्पताल, बाजार, चाय की दुकान और मंदिर में रंग कोडेड कचरा पेटियां रखनी चाहिए। हरे रंग की डस्टबिन में गल्ले वाला कचरा, जैसे सब्जियों का छिलका, डाला जाए। नीली डस्टबिन में सूखा और ना गलने वाला कचरा, जैसे प्लास्टिक और कागज रखा जाए। इससे गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना आसान होगा।
1: लोग खुद आगे आकर स्वच्छता पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम चला सकते हैं। लोग दीवारों पर अपना इलाका साफ रखें जैसे संदेश लिख सकते हैं। लोग कबाड़ इकट्ठा करने वाले या कूड़ा साफ करने वाले से मिलकर ये तय कर सकते हैं कि अलग अलग किया गया कचरा, खासकर प्लास्टिक, सही तरीके से हटाया जाए और खुले में जमा ना हो।
0: दोस्तों, याद है हमने एपिसोड 6 में ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में क्या सीखा था? जल्दी से याद कीजिए। रसोई का कचरा और गाय का गोबर बेकार नहीं होता, इन्हें खाद में बदला जा सकता है, जो खेतों और पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल, अगर आपके घर या खेत के पास थोड़ी सी खाली जगह है, तो आप वहाँ एक छोटा गड्ढा बना सकते हैं और उसमें रोजाना का गीला कचरा डाल सकते हैं, जैसे बचा हुआ खाना, खराब फल या गोबर। इसे कभी कभी हिलाएं और मिट्टी से ढककर रखें। धीरे धीरे ये बेहतरीन खाद बन जाएगी, जो खेतों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इससे कूड़ा भी कम होगा और गांव की सफाई बनी रहेगी।
0: बस ध्यान रखिए कि खाद का गड्ढा घरों और पानी के स्रोतों से दूर होना चाहिए। गाय का गोबर खाद या बायोगैस बनाने में काम आ सकता है, जिससे खेती बेहतर होती है, सेहत सुधरती है और हमारा वातावरण हरा भरा रहता है। तो चलिए स्वच्छता और पर्यावरण के लिए मिलकर काम करें।
1: हाँ बिल्कुल, जब लोग खुद सफाई की पहल करते हैं, तो उसका असर लंबे समय तक दिखता है।
0: सफाई सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम मिलकर काम करें, तो हमारा इलाका साफ और सुंदर बना रहेगा।
1: आपका गांव मिलकर ये कर सकता है। स्कूली बच्चों, युवा समूहों, स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए इकट्ठा करें। हर महीने एक दिन सफाई अभियान चलाएं। चाय की दुकानों, मंदिरों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर कूड़ेदान रखें। लोगों को रसोई और गोबर के कचरे से खाद बनाने का तरीका सिखाएं। इससे कचरा कम होगा और खेतों की पैदावार बेहतर होगी। आंगनवाड़ी या स्कूल के पास एक छोटा सा सामुदायिक बाग बनवाएं।
0: श्रोताओं, सफाई सिर्फ सरकार या पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम घर पर कैसे सफाई रखते हैं, कचरे का सही निपटान कैसे करते हैं और अपने बच्चों को स्वच्छता की आदत कैसे सिखाते हैं, इन्हीं छोटे छोटे कदमों से हमारा गांव साफ और सुंदर बनता है। चलिए मिलकर पहल करें और अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं।

0: दूसरों का इंतजार किए बिना खुद सफाई की पहल करें। अपनी रोजमर्रा की आदतों में सफाई को शामिल करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और स्वच्छता का उतना ही ध्यान रखें जितना हम अपनी सेहत का रखते हैं।
1: याद रखिए कि स्वस्थ गांव ही खुशहाल गांव होता है और स्वच्छ गांव ही सबसे मजबूत गांव होता है।
0: आज के एपिसोड में

0: हमारे नंबर पे फोन करके, हमारा नंबर है 9219207749। अब हमारे सवालों की बारी है जो आपसे पूछने हैं, जो कि हमने पहले भी पूछे हुए थे कार्यक्रम शुरू होने से पहले। तो पहला सवाल है, क्या साफ सफाई सिर्फ घर की होनी चाहिए या बाहर की भी जरूरी है, हाँ या नहीं। सवाल नंबर दूसरा है, क्या हमें खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, हाँ या नहीं। सवाल नंबर तीसरा, क्या स्कूल, तालाब और बस स्टॉप जैसे जगहें भी साफ सुथरी होनी चाहिए, हाँ या नहीं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, और इन तीनों सवालों के जवाब आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर से 9219207749। अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और अपने रेडियो साथी माता दिन भैया खो दो
0: जाने की अनुमति। फिर मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
1: नमस्कार।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: सभी किसान पंच भैया बहनों को आपके रेडियो साथी मनीष की दो हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम पहुंच जावे। और किसान भाइयों कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे सभी किसान पंच भैया बहने अच्छे हुई हैं, खुशहाल हुई हैं। और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे किसान साथियों की जो इस बार ज्यादा बरसात को हो गई हैगी, तो ऐसे बरसात में हमारे बहुत सारे किसान साथियों ने अपनी बोनी भी नहीं कर पाई है, तो कई किसान हमारे मायूस भी हुई हैं और कई किसान खुश भी हुई हैं कि अच्छा पानी गिर गया है और आगे की फसल को हम अच्छी तरीके से और जल्दी से और जो टाइम बुवाई कर रहे थे वो टाइम पे अपन बुवाई कर लेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैंगे, जो भगवान जो रथ हैंगे और भगवान के संगे संगे जो अपना पर्यावरण बदल रहा है वो कछु ना कछु तो विचार हमें जा पे करें चाहिए, कैसे पर्यावरण बदलत है गो और पर्यावरण बदलवे से जे सारे नुकसान देख वेखो और सुन वेखो मिलत हैंगे। लगातार कितने दिनों से अपने यहाँ बरसात हो रही है और इतना पानी चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है गो, तो खुशी की बात भी है और दुख जा बात को है कि किसान साथियों की मोनी नहीं भैयागी। आज हम हमारे किसान साथियों के लाने गेंदे की खेती कैसे भी कर सकते हैं, कैसे फूलन को व्यवसाय भी एक व्यवसाय रथ है वो और खेती भी रथ हैगी और जो अपने एग्रोफॉरेस्ट्री का था यानी कृषि वानिकी जो कर रहे हैंगे, बीच बीच में अगर हम गेंदन के पौधा लगा देंगे तो सीजन भी आ रहा है वो और सीजन में वे गेंदन के जो फूल रथ हैंगे काफी अच्छो मार्केट भी हमें मिल सकत है वो, तो यही विषय पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जासे पहले अपन एक नजर डाल लेते हैंगे मौसम चक्र पे, कैसे मौसम जो अपनो का कथे वो मौसम हमारे लाने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते है वो, तो मौसम की जानकारी भी अपन सुनो। तो सबसे पहले अपन बता रहे हैंगे मौसम की जानकारी, हमारे संगे है वर्षा, तो भी मौसम की जानकारी हमें बताएं।
1: श्रोताओं नमस्कार, जब मौसम की जानकारी हम आपको पहुंचा पा रहे हैंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। साथियों उड़द व मूंग की फसल में जड़ सड़न रोग देखो जा रहा है वो, अतः किसान भाई के लाने फसलन को निगरानी करत रहे, साथ ही में खेत में पाए जावे बारे रोकथाम हेतु 2.5 ग्राम मैनको जैव दवा की मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ हुए पे छिड़काव जरूर कर देवे। साथियों आवे बारे 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाये रहने की संभावना हैगी। दिन के अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात को न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना हैगी। हवा की औसत गति 14 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आवे बारे 3 दिनों के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाये रहने की संभावना भी हैगी। इको ध्यान में रखत भय सब्जियन में दलहनी तथा तिलहनी फसलन में जल भराव की समस्या हो सकत हैगी, अतः किसान भाई जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लेवे। संगे में कीट व्याधियन के लाने निगरानी को कार्य भी करत रहे, साथ में यदि जरूरी हुए तो किसान भाई दवा को छिड़काव करत रहे समय पे। इमें 1 लीटर टी पॉल भी मिला लेवे। इस समय धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लाने खरपतवार नियंत्रण हेतु 20 पाई रीबैंक सोडियम 250 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करवें तथा पहले से लगाई गई धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना बनी हुज्जे। यदि दिखे तो कार्टप हाइड्रोक्लोराइट 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालवें। जिन किसान भैयन की टमाटर मिर्च तथा बैगन आदि की पौध तैयार हैगी वे इनकी रोपाई मेड़न पे यानी उथली क्यारियन पे करवें। बादल छाये रहने की संभावना को ध्यान में रखत भय कद्दू वर्गीय सब्जियन में फली छेदक कीट जैसे फली मक्खी फली बग और प्लम्ब मोथ कॉपर को भी देखने की संभावना बनी हैगी। इको नियंत्रण करवे के लाने प्रूफ

0: नोफोस 50 ईसी 1500 मिली हेक्टेयर खो 600-700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देवे। बैगन में फल छेदक कीट को प्रकोप भी देखो जा रहा है। वो ई के नियंत्रण हेतु क्लोनाफोस 25 ईसी दवा की 2.0 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव साफ मौसम में कर देवे। अरबी में कंदगलन रोग को प्रकोप देखो जा रहा है। गो सो साथियों, ई के लाने बचाव हेतु आपको मेटालेक्जिल मैनको जेब दवा को 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ होवे पे छिड़काव करवे। पशुओं को ज्यादा हरी घास ना खान देवे, नहीं तो अफरा की समस्या भी हो सकत हैगी। आसमान में बादल छाए रहवे के कारण धूप की अवधि में कमी को देखत भय किसान भाई मुर्गी घरन में रात के समय 4-5 घंटा रोशनी की व्यवस्था कर देवे तथा इनके दानन में ऊर्जा और विटामिन की मात्रा बढ़ावे, संगई में कैल्शियम भी मिला के दे देवे। तो किसान भाइयों, आप सब जने सुन रहे थे ज जानकारी, मौसम आधारित जानकारी, और ज जानकारी आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से। नमस्कार।
1: तो साथियों, अभी आपने हमारे वर्षा जी से मौसम आधारित जानकारी को सुना, और जानकारी हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो गेंदा की खेती पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, उस चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, और गीत के बाद आपको सीधा विषय विशेषज्ञ के पास ले चलेंगे और उनसे जानेंगे किस तरीके से गेंदे की खेती, कैसे सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, क्या क्या किस तरीके से हमें लगाने और विधि क्या हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: मेरी गोल्ड फार्मिंग, गेंदे की खेती कब और कैसे करना चाहिए, बेस्ट वैरायटी जो कि हाइब्रिड किस्में हों, इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से कैसे आप गेंदे की मेरी गोल्ड फार्मिंग की एडवांस खेती, वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, स्प्रे खाद उर्वरक की मात्रा, इरिगेशन फर्टिगेशन के साथ साथ खरपतवार की रोकथाम, उत्पादन लागत, मुनाफा और नेट प्रॉफिट के साथ साथ लाइफ साइकिल।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैरीगोल्ड फार्मिंग वैसे कई सारे किसान करते आए हैं और कई सारे राज्यों में होती है, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात दो तीन चीजें हैं। मैं ऐसा जानता हूं और हमने महसूस किया है, कई किसानों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो गेंदे की फूल की खेती के साथ कुछ दो तीन बातें जुड़ी हुई है जो सबको नहीं पता है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो मैं उस टॉपिक के बात करूंगा। वैसे बहुत आसान खेती है, लेकिन उसमें पैसा कमाना और पैसा बनाना, जमीन को सुधारना, पेस्ट डिसीज कंट्रोल करना, वो सब साथ में उसके फायदे जुड़े हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक में दो तीन टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनना, अंत तक बने रहना ताकि आप कोई चीज मिस ना कर जाए। तो गेंदे की फूल की खेती मुनाफाकारक बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो है वो चीज है बुवाई का समय। तो बुवाई का समय कब करना चाहिए ताकि आपको रेट ज्यादा मिले, तो उसका एक जानकारी है, दूसरी वेराइटी, तीसरी चीज है उसमें थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट और उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर पे बिजाई कब करें। किशन भाइयों, नॉर्मली गेंदे का फूल ट्रांसप्लांटिंग के बाद 40 से 45 दिन में पहला फूल दे देता है और उसके 15 से 20 दिन में 2 से 3 तुड़ाई हो सकती है। कोई अच्छी ट्रीटमेंट चलती है तो पहले 45 दिन के बाद और 20-25 दिन आप आगे ले सकते हो। तो गेंदे का फूल आप मानो कि टोटल हम 60 दिन, 2 महीने का पीरियड गिनते हैं कि प्लांटिंग से लेके पहला फूल और वहां से 15 से 20 दिन, नॉर्मली तो टोटल 60 दिन पकड़ते हैं हम। तो आपको सबसे ज्यादा रेट कब मिलेंगे, गेंदे के फूल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कब होती है? तो नॉर्मली ऐसा महाराष्ट्र में कहते हैं दशहरा से दिवाली के आसपास में अगर आपको फूल चाहिए तो आपको बिजाई करनी चाहिए। कब? तो कि आपको रक्षाबंधन में बिजाई करनी चाहिए। बहुत सिंपल गणित है, रक्षाबंधन के दिन आपने ट्रांसप्लांटिंग किया, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझो कि 15 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया, तो 15 अगस्त से 2 महीना, मतलब 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, यानी कि नवरात्रि, दशहरा या दिवाली के आसपास आपको फूल मिलेंगे। ये एक नॉर्मल कहानी है। आपको गणपति भी चाहिए तो उससे और 15-20 दिन पहले प्लांटिंग करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हिंदू कैलेंडर के आधार पे जो त्योहार आते हैं, हमारे रिलीजियस फंक्शंस जो आते हैं, और उसके बाद शादियां शुरू हो जाती है, दिवाली के बाद शादियों का मौसम होता है। तो किशन भाइयों क्या है कि आपको 60 दिन पहले उसके प्लानिंग है। अभी इस बार की बात करें तो इस बार दशहरा दिवाली कब है वो कैलेंडर के आधार पर हमको प्लांटिंग सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी इस बार मान लो कि नवरात्रि की शुरुआत होती है लगभग 22 सितंबर से, लगभग 2 या 3 तारीख को दशहरा आएगा और उसके 20 दिन के बाद यानी कि अक्टूबर के एंड में आपको दिवाली आएगी। तो आपको समझना है सितंबर की 15 तारीख से लेके अक्टूबर की एंड तक ये डिमांड रहेगी, पूरा 1.5 महीना। तो आपका प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए कब? तो कि लगभग 20 सितंबर से शुरू होना चाहिए प्रोडक्शन। तो आपको कहीं ना कहीं 15-20 दिन चला या 1 महीना चला, आप जितना चला पाए, तो दिवाली तक खींच सके तो खींच लो। तो वैसे आप प्रोडक्शन का प्लान करते हो तो वहां से आप 60 डेज माइनस करो, या तो एग्जैक्ट फर्स्ट डे से तो 45 डेज माइनस करो, 22 सितंबर से 45 डेज माइनस, तो अगस्त और सितंबर के 22-22 दिन निकाल दो, तो 8 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया तो आपका गेंदे का फूल का प्रोडक्शन शुरुआत हो जाएगी नवरात्रि के अंदर, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा। दशहरा के दिन आपको ज्यादा प्रोडक्शन आएगा, उस दिन डिमांड भी ज्यादा रहती है, और उसके बाद में दिवाली पे भी आपका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन आएगा। तो ये एक आयोजन ऐसा है, सबका अच्छा हो गया तो हो सकता है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा दो तीन टप्पे में भी प्लांटिंग करते हो तो भी चलेगा। तो आप कुछ अगस्त के पहले वीक में करो, फिर अगस्त के दूसरे वीक में करो, एक अगस्त के तीसरे वीक में करो, ऐसा करोगे तो भी चलेगा। तो ऐसा करने से आपको एक बेनिफिट हो सकेगा, आपकी खेती में फूल लंबे अरसे तक थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े निकलते रहेंगे। तो मार्केट का फ्लक्चुएशन कम से कम लगेगा, तो आपको ओवरऑल रेट मार्जिन थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। अभी उसका एक सिंपल गणित मैं आपको बताता हूँ। एक एकड़ के अंदर मानो कि आपने प्लांटिंग किया है तो तकरीबन 6 से 7 हजार पौधे आएंगे। 6 स्क्वायर फीट में एक, यानी कि 3 से 3.5 फीट में लाइन आएगी और 1.5 से 2 फीट में आपको लगाना है। तो 6 स्क्वायर फीट में एक पौधा फैलेगा अच्छी तरह से, तो आपको 42,000 स्क्वायर फीट का एक एकड़ होता है, 43,560 लगभग। आप ऐसा गिनते हो तो 7,000 जितने पौधे आएंगे। 7,000 पौधे में से मानो कि 1,000 पौधे को बॉर्डर इफेक्ट, मर गया, डिसीज लग गया, और नॉर्मली आपके 6,000 बच गए, मैं तो बोलता हूँ 5,000 ही बच गए, और 750 से किलोग्राम वजन दे देता है, 4 से 5 टन वजन आता है, 50 रुपये किलो रेट भी रहता है, 100 रुपये भी रहता है। मैं तो ऐसा गिनता हूँ, एक नॉर्मल हिसाब करते हैं कि 4,000 किलो आपका प्रोडक्शन आया एक एकड़ में से, और आपको ज्यादा नहीं केवल 20 रुपये का एवरेज आया तो भी 80,000 का होता है। 10 रुपये भी रेट रहा किलो का तो भी 4,000 किलो का प्रोडक्शन आया, 40,000 का हुआ। ये सिर्फ 60, 65 और 70 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 80 दिन तक चलता है, उससे ज्यादा चलता भी नहीं। तो ये खेती एकदम जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जैसे कैच क्रॉप है, आपने लगाया और तुरंत ले लिया, उगवा लिया। अभी इसमें ध्यान रखने वाली बाबत ये है कि पहले नंबर पे आप कोई एक रंग का पसंद मत करो, मल्टी कलर में करो, यानी कि नारंगी वाला भी करो और पीला वाला भी करो। तो मार्केट में जिसका डिमांड ज्यादा होगा, एक का कम होगा, एक का ज्यादा होगा, कभी क्या होता है आपको पता नहीं, हमको पता नहीं, मार्केट कहाँ पे ट्रेंड करता है, लेकिन दोनों लेके जाओगे आपका बिक जाएगा। कभी किसानों को ऐसा भी होता है कि कोई दिन 2-2 रुपये किलो भी बेचेंगे, तो कभी ऐसा होता है कि कभी 100-100 रुपये किलो भी बेचेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया है वैसे आप 2-3 फ्लक्चुएशन को टालने के लिए कि एक तो 2 कलर का करो, 3-4 टप्पे में करो, जैसे मैंने कहा अगस्त के पहले वीक में किया, दूसरा थोड़ा सा मतलब 1 एकड़ का प्लानिंग है तो 1/3 एकड़ यानी कि 10-15 गुंठा में अगस्त में पहले वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा में अगस्त के दूसरे वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा तीसरे वीक में किया, तो आपका गणपति से लेके दिवाली तक का प्रोडक्शन सेट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमको खुद को ऐसा एक्सपीरियंस है, गणपति में रेट नहीं मिला उस दिन, उस साल सबका अच्छा हुआ था, फिर रेट नहीं मिला तो सबने निकाल दिया, हमने रखा था, वैसे भी खर्चा कर चुके थे तो रखा था, तो दिवाली पे हमको रेट ज्यादा मिला तो हमारा पूरा खर्चा ले आया। ऐसा था कि हमने 2 रुपये किलो बेचा था और 120 रुपये किलो भी बेचा। तो ऐसा फ्लक्चुएशन टालने के लिए आपको कुछ डिसीजन भी बाद में लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने कहा कि 2 वेराइटी करो, 2-3 टप्पे में प्लांटिंग करो, तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसमें वो खाद वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गेंदे का फूल है वो इल्लियों को आकर्षित करता है, खास करके पतंग को अंडे देने के लिए आकर्षित करता है, तो उसमें हरी इल्ली आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो आप उसके लिए छिड़काव को कुछ प्रबंध कर सकते हो। नॉर्मली शुरुआत में थ्रिप्स आती है तो थ्रिप्स के लिए कोई प्रबंध कर सकते हो, ऑल्टरनेट या ब्लाइट वगैरह आता है तो उसको कोई प्रबंध कर दे सकते हो। खाद भी बहुत इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन फिर भी डाली की फूटान, वृद्धि विकास, कलर क्वालिटी, उसके लिए आपको चाहिए तो आप एक एकड़ में 1 बैग DAP, 1 बैग पोटाश पहले से डाल दो, बाद में डालने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फटाफट कार्यक्रम होता है इसमें। 60 दिनों में तो मतलब 45 दिनों में फ्लावरिंग आता है, 60 दिनों में पीक जाता है, फिर धीरे धीरे धीरे कम हो जाता है, 70-80 दिन में तो खत्म हो जाता है, मतलब पूरा 3 महीने की भी फसल है नहीं, 1.5 महीने में शुरू और 3 महीने में से पहले खत्म, ऐसी फसल है। तो आपको पहले से 1 बैग DAP, 1 बैग पोटाश डाल दो, मजबूती के लिए पोटाश भी जरूरी है, तो कलर के लिए भी जरूरी है, और बाद में 1-2 स्प्रे आप न्यूट्रिशन का ले सकते हो कि जब आप डाली फूटान की अवस्था में हो तो आप फास्टर ले लो कि ज्यादा से ज्यादा डाली फूटान का ग्रोथ जल्दी जल्दी आ जाए, और जैसे ही 40-45 दिन हो जाए तो 1 माइक्रोग्रेन का ग्रेड आप दे सकते हो, जैसे महाराष्ट्र में ग्रेड 2 है, गुजरात में ग्रेड 4 है, जो आपके राज्य का आपका जो भी ग्रेड है आप माइक्रोग्रेन का स्प्रे कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो आप

तेल और वगैरह ले सकते हो, जिसकी वजह वृद्धि विकास के साथ नंबर ऑफ फ्लावर भी बढ़ जाए। वृद्धि विकास ज्यादा हो रहा है तो 0.34 का प्रयोग करो, अगर ऐसा नॉर्मल है तो कोई जरूरत है नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है फर्टिलाइजर वगैरह में। कुछ ना करो तो सिंपल, पहले बेसल डोज में संचार डाल दो, बाद में भूमि का डाल दो, और उसके साथ में थोड़ा सा पहले डीएपी डाल दो आधी बैग, और बाद में थोड़ा आधा बैग यूरिया डाल दो, थोड़ा सा पोटास डाल दो, तो भी चल जाएगा। खाद का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्लांट डेंसिटी मेंटेन करना। आपको 7000 प्लांट मेंटेन करने पड़ेंगे तो ही फ्लावरिंग अच्छी है। दो वेरायटी अलग अलग करो, दो तीन टप्पे में करो, तो आपको ये मुनाफे वाली खेती हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जैसे मैंने कहा है कि 4 टन तो मिनिमम उत्पादन आता ही आता है, 4000 किलो, और उसके बाद में आप अच्छी सी मेहनत कर लेते हो तो थोड़ा उत्पादन बढ़ने की भी संभावना है। और आपका नसीब लग गया और 4 टन में से 1000 भी टन 30-40 रुपए किलो चला गया, तो 30-40 हजार तो उसी पीकिंग का आ जाएगा, बाकी का 20-30 हजार दूसरा आएगा, तो 50-60 हजार प्रति एकड़ 2 से 3 महीने में आ सकता है। अभी आते हैं ना दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया ये फसल कुछ पेस्ट को आकर्षित करती है, यानी कि हरी लीव की जो पतंग होती है उसको आकर्षित करती है अंडे रखने के लिए। तो ये आप कोई भी ऐसी फसल लगाई है, जैसे कि वेजिटेबल्स लगाया है या तो अरहर लगाई है, तो उसकी बॉर्डर पे कर दो, या तो एक एक लाइन छोड़ के एक एक में करो। तो अरहर वगैरह लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 4-5 महीने का फसल है। बैगन वगैरह 4-5 महीने का फसल है, तो उसकी बॉर्डर पे आप लगाते हो, या तो 2-3 लाइन लगा के लगाते हो, तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम 45 से 60 दिनों में हो जाएगी। प्लस उसके साथ ही साथ में वो इल्लियों को आकर्षित करता है, तो वहां इल्लियां ज्यादा आएगी, तो आप दवाई उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। और आपको निगरानी में भी रख सकते हो कि भाई यहाँ पे इल्लियां ज्यादा है, तो अभी आगे अपनी मुख्य फसल में भी इल्लियां आएगी, तो एक ट्रैप क्रॉप की तरह भी आप उपयोग कर सकते हो इसको। दूसरा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जमीन के अंदर निमेटोड कंट्रोल करता है। लोगों के अलग अलग विचार है इसमें, कि ऐसा बोलते हैं कि भाई इसमें निमेटोड ज्यादा आ जाते हैं इसलिए मुख्य फसल में नहीं आते, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो हमको सुगंध आती है वो अल्कलॉइड है, और वो कहीं ना कहीं निमेटोड के लिए जहर है, मतलब वो खाने से रोकता है। और खास करके हमने ऐसा देखा है, ये हमारा अनुभव है, गलगोटा जिसको बोलते हैं देसी वाला, उसमें थोड़ा वो प्रमाण ज्यादा होता है जड़ों में। और अगर आप वो पर्पज से कर रहे हो, तो जैसे मैंने बताया कि निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए कर रहे होगे, जैसे कई किसान भाई हमने देखा है कि राजस्थान में चोमू वाले इलाके में, ये गुजरात में अगर आते हैं तो ईडर के आसपास के इलाके में, मेहसाणा के आसपास में आते हैं, राजकोट के आसपास में, बड़ौदा के आसपास में, महाराष्ट्र में आते हैं तो ये नारायणगांव के आसपास में इलाके में, जमीन में मीडियम टू लाइट सॉइल है, जमीन उपजाऊ बहुत है, तो मीडियम टू लाइट सॉइल मतलब निमेटोड ज्यादा। इवन चिली वाला एरिया, कहीं भी चिली मिर्ची वगैरह होती है, लौकी वगैरह होती है, कुकुरबिटेसियस फैमिली का होता है, वहां जमीन में निमेटोड बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप एक मानसून सीजन में इसकी खेती करो, और थिक डेंसिटी, जैसे मैंने बोला नॉर्मल कॉमर्शियल फार्मिंग करने के लिए आपको 6-7 हजार पौधे लगाना है, इसमें 10 हजार पौधे लगाने, और देसी वाला गलगोटा कर देना है, आपका एक सीजन जाएगा, लेकिन लगभग लगभग निमेटोड से 80-90% शांति मिल जाएगी। ये ट्रीटमेंट ऐसी है कि मानो कि कुछ ना किया, आपने 8-10 हजार पौधे लगाए हैं, तो आपका 4-5 टन प्रोडक्शन आ गया, और 10 रुपये भी रेट आ गया, तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, और ऊपर से फ्री में निमेटोड कंट्रोल हो जाएगा। वैसे कई किसान भाइयों को पता होगा कि निमेटोड की दवाइयाँ बहुत महंगी आती है, मल्टीपल टाइम ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता। जब ट्रीटमेंट किया है तो 10-15 दिन 1-2 महीना अच्छा लगता है, फिर दूसरी चीज में दूसरा प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आप कर सकते हो, कि आप इसकी खेती कर लो, थोड़ा थिक डेंसिटी प्लांटिंग करो, और उसमें जमीन में जब ये इसका जो मटेरियल जाता है, तो रूट एक्सुडेट बोलते हैं, उससे निमेटोड को खाने में बहुत तकलीफ होती है, उसको एवॉइडेंस बोलते हैं, कि मतलब कॉन्टेक्ट, जड़ से कॉन्टेक्ट जो होना है वो होता नहीं, हुआ तो भी बहुत इन्फेक्शन होता नहीं। ओवरऑल कहने की बात यह है कि ये निमेटोड को मैनेज करने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम वनस्पति है, इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो मैंने 3 पार्ट बताए, एक पार्ट ऐसा है कि इसकी खेती में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ऑफ सोइंग है, कि कब सोइंग करोगे तो कब प्रोडक्शन आएगा। तो मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से ऐसा है कि अगस्त के 1, 2 या 3 पखवाड़े में किया तो आपको फायदा होगा, लेकिन

मार्केट की फ्लक्चुएशन से निजात पाने के लिए आपको दो वेराइटी पसंद करनी है और तीन या चार टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो आपको जैसे हमको भी अनुभव है, मुझे 2 रुपये भी किलो बेचा था और 120 रुपये भी किलो बेचा था, तो ये आपका हो सकता है 40-50-60 हज़ार का एकड़ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि बबर ऐसा करे कि आपका 4 से 5 टन प्रोडक्शन आए और 50 रुपये किलो बिके, 2-2.5 लाख का एकड़ भी हो सकता है इसमें। और उसके आगे निमेटोड बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होते हैं इससे। और तीसरा कि जैसे इसको ट्रैप क्रॉप की तरह प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे हरी इल्ली को ही आकर्षित करता है। और एक किसान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि खास करके पोमोग्रेनेट यानी कि अनार की खेती करने वाले किसान हैं जो ऐसा लगाते हैं, दो तीन प्लांट लगाते हैं दो साइड में, मतलब ये लाइन है, ये लाइन है, तो यहाँ पे लगा देते फिर उस तरफ नहीं लगाते फिर आगे लगाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कमर्शियल की तरह लगाओ, एक पेड़ के आसपास में 15-20 पौधे लगा दो गोल लाइन में, हो सके तो ज्यादा लगाओ, बराबर। आपका प्रोडक्शन भी आएगा, मार्केटेबल वॉल्यूम आएगा आपको, कि आप मार्केट में ले जा पाओ उतना वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा। तो आपको मानसून में खर्चा निकल जाएगा बहुत बड़ा। आप ये पपाया में लगा सकते हो, पपाया की बॉर्डर पे एक कैच क्रॉप की तहत आ जाएगा, क्योंकि पपाया का नॉर्मली लागवड जो होती है, नॉर्मल पपाया लगाते हैं मार्च अप्रैल या तो मई में लगाते हैं, तो पपाया छोटा सा रहता है तो उसके बाजू में आप लगा सकते हो। लगभग एक पपाया के आसपास में लगभग 4 से 5 पौधे 10 पौधे भी लगा सकते हो आप। ये कोई खाद खाता नहीं है, जितना पपाया में डालते हो उसमें 10-15% खाएगा, लेकिन जो निमेटोड के सामने रक्षण करेगा और जो इल्लियों को बचाएगा उतना ही काफी है, तो उतने से आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो खास करके बागवानी जो फसलें हैं उसमें ये एक कैच क्रॉप प्लस ट्रैप क्रॉप की तरह आप उपयोग कर सकते हो। तो इसलिए मुझे गेंदे का जो खेती है बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि किसान को फायदा ही फायदा करवाता है, कि एक एंगल से नहीं, आप मल्टीपल एंगल से देखो आपको फायदा होता है। कभी ऐसा होगा, किसी किसान का होगा, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा कि 1-2 रुपये में किलो में बेचा और कोई फायदा नहीं हुआ, पूरा 3-4 टन माल था और पूरा हमने 4-5 हज़ार रुपये लिया, कि जितना तो उसमें डाला था उतना भी नहीं आया, लेकिन फिर वो जमीन सुधर जाती है, वो दूसरा बेनिफिट है, वो सब बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए खास करके इसको एज ए सिंगल क्रॉप लोग नहीं करते, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, या तो जैसे मैंने बताया सिंगल क्रॉप करना है तो मल्टीपल टप्पे में, मतलब 1-2-3 टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो किसान भाइयों खूब खूब धन्यवाद, हमको अच्छी तरह से सुना।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे इस प्यारी सी चर्चा को। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होगी और हमारे किसान साथी जो घर पर बैठे हैं वो इस तरीके की खेती कर अपने व्यवसाय के रूप में इसको ले सकते हैं। और व्यावसायिक तरीके से यदि हम खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे किसान साथियों को फायदा ही फायदा होगा। और अगर वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान साथी इस फसलों को करना चाहते हैं तो जरूर अपने कृषि विस्तार अधिकारी या फिर संबंधित वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में आने वाली फसलों के लिए हम तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में अपनी मिट्टी की परीक्षण भी करा सकते हैं और अपने मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है उसकी भरपाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि हम अब आने वाले समय में हम केमिकल से भरी खादों का इस्तेमाल करते हैं उसको ना करके हम जैविक विधि से अपनी खेती को करें, ताकि अपनी फसल जो उत्पादन होगा कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक कम होगा, लेकिन इसके बाद उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और हमारे साथियों को ये राहत भी मिल जाएगी कि हमें जैविक भरी जो फल या सब्जियां रहती हैं या फूल रहते हैं उनका सेवन हमें करने को मिलेगा। तो हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों एक क्रम में आज भी अपन एक विधा को सुने और विधा को आनंद ले हैं। बा विधा है लांगुरिया। जी हाँ दोस्तों, सो देखो लांगुरिया गीतन को अपन सुनते हैं और इन गीतन को आनंद लेते हैं। तो आओ सबसे पहले गीत सुनते हैं अपन भैया हरदयाल जी के स्वर में के बेंदा ले दे लांगुरिया। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

नौने मड़के नौ दरवाजे के दर्शन कर ले लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ये लांगुरिया गीत को, आनंद लो है दोस्तों। ये लांगुरिया को गा रहे थे भैया दिनेश सोनी जी और संगे गा रही थी संध्या सरगम जी। सो आओ दोस्तों अब एक क्रम में कार्यक्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई लांगुरिया को और लेते हैं लांगुरिया गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

मोरो सुनो डरो लिलार के बेंदा लेदे लांगुर गया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुर गया गीत, अपन सब जन ने सुनो है गीत को, आनंद लो है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया हरदयाल वर्मा जी। अब दोस्तों एक क्रम में अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और सुनत हैं अगले साथी की गाई भाई लांगुरिया को। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, देखी शिव की अजब बारात गांव की भग्गा लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ई लांगुरिया को आनंद लाओ है। ई लांगुरिया गीत को गा रहे थे भैया चतुर्भुज जी। सो दोस्तों, अब चतुर्भुज भैया जी की लांगुरिया की बात आओ सुनते हैं अगले साथी की गाई भाई लांगुरिया को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दिन भैया के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, मोरी मैया के दरबार छमा छम नाचे लांगुरिया। अब दोस्तों इनके एक गीत के बाद फिर से अपन सुनते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई लांगुरिया को।

मोरी चुनरी भईरे भदरंग लांगुरिया लादे चुनरिया जयपुर की। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया गीत अपन सब जन ने सुनो है, इको आनंद लव है। आप दोस्तों ई लांगुरिया गीत को गा रहे थे भैया रामकृष्ण कुशवाहा जी। सो दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय हो गए है। सो दोस्तों हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात एक कार्यक्रम में एक बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।

बहुत दिनन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी, बहुत दिनन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं

0: को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

रहा है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत का है। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मोर नाम मोनिता रानी दास, थाना बागबर, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा। तो हमारे धान खेती बालू खेती नष्ट है, नष्ट होने पैसा देते ना लाभ है। बाकी खेतियों के

गलियों गलियों फिरता हूँ, कब से जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और कहीं ना एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ।

0: कहना है कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो।

0: बताएं कैसे? यारे मोहब्बत मत करना, यारे मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारे मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
1: सतली कहना है हमने इतना प्यार करो, मालूम कितना
0: कितना
1: कल तक।

जब पूतना कृष्ण भगवान हनुमान ने आई थी तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे थे, जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो क्या बोले

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

एपिसोड नंबर 11 सफाई कर्मचारी। इस एपिसोड का उद्देश्य है लोग सफाई कर्मचारियों का काम, उनकी जिम्मेदारियां, मुश्किलों और परेशानियों को ठीक से समझें। सफाई कर्मचारियों को फायदेमंद योजनाओं की जानकारी दी जाए, साथ ही ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे उन्हें इज्जत और मान सम्मान मिले। इस कार्यक्रम के मुख्य संदेश है सफाई कर्मचारियों का काम और उनकी समस्याएं, सरकारी योजना और कानूनी सुरक्षा, पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग। पहले और बाद में पूछे गए कुछ सवाल। सवाल नंबर 1, क्या सफाई कर्मचारियों को काम करते समय सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने पहनने चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर 2, क्या गांव के सभी सफाई कर्मचारियों की पहचान और पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं? क्या ग्राम पंचायत को सफाई कर्मचारियों की सेहत की जांच समय समय पर करानी चाहिए, हाँ या नहीं? श्रोताओं, ये 3 सवाल हैं, इसके जवाब आपको इसी कार्यक्रम में मिलेंगे, इसीलिए कार्यक्रम ध्यान से सुनिएगा। विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के लिए इन योजनाओं पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY योजना के तहत प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा मिलता है। ये इलाज बड़े अस्पतालों में भी कराया जा सकता है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये योजना सफाई कर्मचारियों और अन्य लोगों के जीवन बीमा का फायदा देती है। अगर किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 2 लाख की सहायता राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तीसरी योजना है। इस योजना में ऐसे मामलों में मदद की जाती है जब किसी सफाई कर्मचारी की गंभीर दुर्घटना हो जाती है। अगर दुर्घटना में मौत या पूरी तरह से अपंगता हो जाती है तो 2 लाख की सहायता राशि मिलती है। अगर कुछ हद तक अपंगता होती है तो 1 लाख तक की मदद दी जाती है। स्वच्छता योद्धा, स्वच्छता के गुमनाम नायक,

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी। मैं हूं आपकी आरजे वर्षा और मेरे साथ है मेरे आरजे आरजे
1: माता दीन।
0: कभी भी सड़क पर कचरा नहीं फेंकते हैं, दूसरों को भी साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए कहते हैं।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे माता दीन। आज हम एक खास एपिसोड लेकर आए हैं। इसमें हम उन लोगों की बातें करेंगे जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनकी तारीफ कम होती है।
0: बिल्कुल सही कहा माता दीन, वे ना तो सूट पहनते हैं और ना ही बड़े दफ्तरों में बैठते हैं, लेकिन उनके बिना साफ भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। ना साफ सड़कें, ना ठीक से चलने वाले शौचालय और ना ही रोज की सफाई होगी।
1: आज का एपिसोड उन सफाई कर्मचारियों के बारे में है जो स्वच्छता के असली हीरो हैं। वे गलियां साफ करते हैं, सेप्टिक टैंक खाली करते हैं, नालियां साफ करते हैं और कई बार बहुत मुश्किल हालात में भी लगातार काम करते रहते हैं ताकि साफ, सुरक्षित और रहने लायक माहौल बना रहे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि नाली, स्कूल परिसर या सार्वजनिक शौचालय किसने साफ किया? ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते।
1: हाँ, उनका काम दिखता तो है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पर आज ऐसा नहीं होगा। आज हम उनके काम के साथ साथ उनकी जिंदगी और परेशानियों की बात भी करेंगे। ये भी बताएंगे कि वे भी सुरक्षा, मदद और सम्मान के हकदार हैं।
0: वे ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं, जैसे गंदे टैंक साफ करना, जाम नालियों को खोलना, भारी मशीनें चलाना और कचरा साफ करना। इन कार्यों की वजह से उन्हें हैजा, टाइफाइड, पीलिया और सांस की बीमारियों का खतरा बना रहता है।
1: एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 50 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी काम करते हैं। उनमें से करीब 20 लाख लोग ऐसे काम करते हैं जो बहुत जोखिम भरे होते हैं। सोचिए, अगर ये बिना मास्क, दस्ताने या सुरक्षा उपकरणों के काम करते हैं तो उन्हें कितनी परेशानी होती होगी।
0: ये काम बहुत खतरनाक होता है। दुख की बात ये है कि ये लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सफाई कर्मचारी कई बार कम वेतन में नौकरी की गारंटी के बिना मुश्किल हालात में काम करते हैं।
1: लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार ने खासकर स्वच्छ भारत मिशन के जरिए सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कई अच्छे कदम उठाए हैं। कुछ खास योजनाएं हैं जिसका उद्देश्य उन्हें सुरक्षित और सम्मानित बनाना है।
0: दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय यत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र अभियान यानी नमस्ते योजना के बारे में बात करेंगे। ये योजना दो मंत्रालयों, सामाजिक न्याय मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की साझी पहल है।
1: इसका मकसद सूखी शौचालयों, खुली नालियों या सेप्टिक टैंकों से मानव मल को बिना मास्क या दस्ताने के हाथ से साफ करने की खतरनाक प्रथा को समाप्त करना है।
0: नमस्ते योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को वैक्यूम मशीन चलाना सिखाया जाता है और उन्हें मास्क, दस्ताने, जूते और सुरक्षा साधन जैसे जरूरी सामान इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उन्हें इलाज के लिए बीमा और कानूनी सुरक्षा भी मिलती है।

0: क्या आप जानते हैं कि अगर किसी को बिना सुरक्षा के शिविर साफ करने को मजबूर किया जाए तो ये भारतीय कानून के हिसाब से गलत माना जाता है।
1: हाँ, मुझे पता है। सफाई कर्मचारी को बिना सुरक्षा उपकरण के शिविर में भेजना गलत है। ऐसा करना कानून के खिलाफ है।
0: सही कहा, लेकिन कई जगहों पर नियम का पालन नहीं होता है। सफाई कर्मचारी को बस एक बाल्टी देकर गंदे माहौल में उतरने को मजबूर किया जाता है, जिससे उन्हें हैजा, पीलिया और सांस की बीमारी जैसी समस्याओं का खतरा रहता है। साथ ही चोट लगने और जहरीली चीजों से नुकसान का डर भी रहता है।
1: मुझे लगता है कि उचित कदम उठाने का समय आ गया है। कानून का पालन करें और साफ सफाई का काम करने वालों को सम्मान दें।
0: और यही पंचायतों की भूमिका शुरू होती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पंचायत की जिम्मेदारी है कि सफाई कर्मचारी सुरक्षित रहें, उन्हें अच्छा वेतन मिले, उन्हें काम की ट्रेनिंग दी जाए और उनके साथ इज्जत से पेश आया जाए।
1: पंचायत सफाई कर्मचारियों की सूचना एक जगह जमा कर सकती है, उन्हें फोटो वाले पहचान पत्र दे सकती है और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ सकती है, जैसे इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना।
0: चलिए अब इन योजनाओं की और जानकारी देते हैं।
1: बिल्कुल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या PMJAY एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत हर योग्य परिवार को अस्पताल में इलाज के लिए साल भर में 5 लाख तक की मदद मिल सकती है। इसके लिए सफाई कर्मचारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या ग्राम पंचायत ऑफिस जा सकते हैं। उन्हें सिर्फ आधार कार्ड और राशन कार्ड ले जाना होता है। पंचायत उन्हें ई हॉस्पिटल ID बनवाने और क्लेम की प्रक्रिया समझाने में मदद भी करती है। इस तरह अगर परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ती है।
0: और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण यानी PMAY जी की ये योजनाएं लोगों को पक्के घर बनवाने में मदद करती हैं। इसके तहत उन्हें जरूरी सुविधाएं वाले घर बनाने के लिए पैसे मिल सकते हैं। प्रक्रिया आसान है, वे अपने ग्राम पंचायत के ऑफिस जाएं, वहां उनके आधार कार्ड और जमीन के कागज देखे जाएंगे, फिर पंचायत उनका आवेदन करेगी। अगर मंजूरी मिल जाती है तो उन्हें घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं।
1: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY एक ऐसी जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मौत होने पर 2 लाख का कवर देती है। ये योजना 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए कम सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है। सालाना प्रीमियम ₹436 प्रति व्यक्ति है।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY एक दुर्घटना बीमा योजना है जो 18 से 70 साल की उम्र के लोगों के लिए अचानक मौत या अपंगता के लिए 2 लाख रुपए तक का कवर देती है। ये योजना प्रति व्यक्ति ₹20 प्रति वर्ष के सस्ते सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है।
1: देखिए, सफाई कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं हैं जिसका वे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कई बार लोगों को आवेदन करने का तरीका पता नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि इस बारे में लोगों को बताया जाए। अगर आप सफाई के काम में लगे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं तो उन्हें जरूर अपनी पंचायत से बात करने और इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए कहें। इससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है।
0: हाँ, ये उनके लिए बहुत काम की बात होगी। पंचायत को समय समय पर ऐसे कैंप भी लगाने चाहिए जहाँ सफाई कर्मचारियों को लाभ देने वाली योजनाओं के बारे में बताया जाए।
1: ये बहुत काम की बात होगी। ये भी ना भूलें कि हर कर्मचारी को काम की जगह पर PPI किट, साफ शौचालय, पीने का पानी और फर्स्ट एड की सुरक्षा मिलनी चाहिए।
0: एक और जरूरी बात है, सफाई कर्मचारियों के लिए सेहत से जुड़े कैंप का आयोजन होना चाहिए। वे अक्सर खतरनाक चीजें जैसे संपर्क में आते हैं,

0: उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जरूरी है कि पंचायती राज संस्थाएं समय समय पर उनकी डॉक्टर से जांच कराएं, समय समय पर टीके लगवाएं और लगातार मदद देते रहें।
1: प्रशिक्षण भी उतना ही जरूरी है। सफाई कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा औजारों के इस्तेमाल, मशीन चलाने और डिजिटल साक्षरता का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने फायदे ऑनलाइन देख सकें।
0: ये सब तो समझ में आती है, लेकिन एक और बात है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ।
1: बताओ क्या बात है?
0: मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम सफाई कर्मचारियों के नाम जानते हैं, उनके परिवार के बारे में कुछ जानते हैं और क्या हम उनके लोगों को धन्यवाद कहते हैं जो हमारी गलियां, नालियां, शौचालय और सड़कें रोज साफ करते हैं।
1: शायद ही कभी, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए। हमें ये तय करना चाहिए कि सफाई दिवस पर ग्राम सभा की बैठकों में, स्कूल के कार्यक्रमों में सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया जाए, उनके काम के लिए उन्हें इज्जत, मान सम्मान और पहचान मिले।
0: हाँ, ये एक बहुत बढ़िया सोच है। महीने का सबसे अच्छा सफाई कर्मचारी जैसा बेज भी किसी को गर्व महसूस करा सकता है।
1: ये कोई दान नहीं बल्कि इज्जत है। ये तो बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। हमें अपने सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान भरा काम करने का माहौल बनाना होगा। जैसे बाकी काम होते हैं, वैसे ही सफाई भी एक काम है।
0: तो श्रोताओं, आज के इस एपिसोड में हम हर सफाई कर्मचारी, चाहे वो अब काम कर रहे हों या पहले करते थे, को सलाम करते हैं। उन्होंने चुपचाप मेहनत की है, गलियां साफ की हैं, नालियां खोली हैं, हमारी जिंदगी को साफ और सेहतमंद बनाया है। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि अगर आपको कोई सफाई कर्मचारी दिखे तो उन्हें धन्यवाद जरूर दें, उन्हें पानी, चाय या कुछ खाना दें और सबसे जरूरी बात है उन्हें सम्मान दें। उनका काम इज्जत के काबिल है।
1: सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों, याद रखिए कि सुरक्षा के लिए पहने जाने वाले पीपीआई किट पहनना भले ही थोड़ा असहज लगे, लेकिन ये आपकी जान बचाता है। दस्ताने, जूते और मास्क आपको खतरनाक बीमारियां और जहरीले गैसों से बचाते हैं। हर बार जब आप इन सुरक्षात्मक चीजों को पहचानना भूल जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी नहीं, अपने परिवार की सेहत को भी खतरे में डालते हैं। आपके कपड़ों पर लगे कीटाणु आपके बच्चों और जीवन साथी को भी बीमार कर सकते हैं। और हाँ, एक तय समय के बाद पीपीआई किट बदलना बहुत जरूरी होता है। इसे साफ रखना भी उतना ही आवश्यक है।
0: प्यारे श्रोताओं, सुरक्षित रहिए, साफ रहिए। ये कभी मत भूलिए कि जो हमारे लिए सफाई करते हैं वो भी पूरे गर्व के साथ जीने के हकदार हैं।
2: आइए स्वच्छ भारत का निर्माण सिर्फ साफ सड़कों से नहीं बल्कि साफ दिलों से भी करें।
1: संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम एपिसोड 11 यही समाप्त होता है। श्रोताओं, यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है हमें जरूर जरूर जरूर बताइएगा हमारे नंबर पे कॉल करके। हमारा नंबर है 9219207749। श्रोताओं, जो सवाल हमने कार्यक्रम शुरू होने से पहले पूछे थे आपसे, एक बार फिर से उन कार्यक्रमों को यानी उन सवालों को हम दोहरा देते हैं। तो सवाल नंबर एक है, क्या सफाई कर्मचारियों को काम करते समय सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने पहनने चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर दूसरा, क्या गांव के सभी सफाई कर्मचारियों की पहचान और पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर तीसरा और आखिरी, क्या ग्राम पंचायत को सफाई कर्मचारियों की सेहत की जांच समय समय पर करानी चाहिए, हाँ या नहीं? इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे अगर आपने यह कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जल्दी से फोन उठाइए और हमें व्हाट्सएप करिए इन तीनों सवालों के जवाब हाँ या नहीं में। आज के इस कार्यक्रम से जाने का होता है हमारा समय और हम चलते हैं, फिर जल्दी ही आप सभी से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बीमारियों से दूर रहिए।
2: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों कैसे हैं? मैं आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी अच्छे होंगे। अब तो स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने पाए हैं उन सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपना, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथियों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से, हम तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करते हैं, कहां पर उनको कैरियर बनाना चाहिए, कैसे कैरियर बना सकते हैं उस विषय को लेकर चर्चा करते हैं, साथ में उनकी आजीविका को लेकर चर्चा करते हैं। सफल जो हमारे साथी रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को, और उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे श्रोता साथी ने अपने जीवन में बदलाव किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में, चूंकि स्कूल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं और हमारे विद्यार्थी अब असमंजस में हैं, क्या करें, कैसे करें, कौन मार्गदर्शन देगा, बड़ी मतलब ऐसी विचित्र समस्या रहती है इस समय डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज हम पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि आज मास कम्युनिकेशन को देखा जाए, पत्रकारिता को देखा जाए तो काफी ब्रॉड होती चली जा रही है, काफी इसका विस्तार हुआ है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हमारे युवा साथी इसमें कैरियर बना सकते हैं, कहां अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इस विषय पर चर्चा करने के

0: ये आज डॉक्टर संजीव जी हमारे आज स्टूडियो में पधारे हैं, तो उनसे आज ज्ञान लेंगे, उनसे आज ऑप्शन ढूंढेंगे, उनसे आज जानकारी लेंगे कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर, अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या संभावनाएं होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संदीप जी के पास आपको ले चलते हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं इस विषय को लेकर। सर जानना चाहेंगे,
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी रेडियो बुंदेलखंड के श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और रेडियो बुंदेलखंड का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित कर इस वार्ता के लिए सुअवसर दिया।
0: सर देखा जाता है कि अगर बुंदेलखंड की ही बात करें और बुंदेलखंड में खास तौर पर युवाओं का कैरियर, क्योंकि 12th के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और नया सेशन भी चालू हो गया है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो चूंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी
1: जी
0: ये जहन में उनके रहता है कि अब आगे क्या करें, किसमें कैरियर बनाएं, कैसे बनाएं, क्योंकि उनका जो मन रहता है बड़ा चंचल रहता है। किसी दोस्त ने उनसे कह दिया कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ में अगर किसी ने कह दिया कि आप पढ़ाई करिए, आईएएस आईपीएस की तैयारी करिए, आपको क्या लगता है किस तरीके का लोगों को और खास तौर पर युवाओं को किस तरीके का चयन करना चाहिए? सर
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बहुत सटीक समय पे आपका प्रश्न हुआ है। बिल्कुल, बुंदेलखंड रेडियो के सभी श्रोताओं में जो अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसा प्रश्न किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा, विशेष तौर पर जो लोग 12वीं पास करने के बाद अपने कैरियर की राह पर खड़े हैं और उनको ये विभूचन है कि अब हम कहाँ जाएं, किस क्षेत्र को अपनाएं, ऐसे में उन युवाओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो मीडिया क्षेत्र को अपना सकते हैं। मीडिया क्षेत्र आज इतना व्यापक है और ये मीडिया डिसिप्लिन अपने आप में एक स्थापित डिसिप्लिन हो चुका है। देश के न सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि अनेक राज्य विश्वविद्यालयों में भी पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभाग हैं, जहां पर की प्रशिक्षित अध्यापक लोग रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेब मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया और रेडियो जॉकी बनने के सपना, बहुत सारे युवा हमारे श्रोता जो इस रेडियो बुंदेलखंड को भी सुन रहे हैं, युवाओं का बहुत ग्लैमर होता है कि या तो वो टेलीविजन में एंकर बन जाएं, कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें, या रेडियो में लोग उनकी बातों को सुने। यदि आपकी आवाज में माधुर्य है, मेलोडियस वॉइस है, आपकी वॉइस कल्चर बहुत अच्छी है, आपको संचार कौशल बहुत अच्छा है, बोलने की कला है और आप के पास जनरल अवेयरनेस है, आपके पास आत्मविश्वास है, तो आपको रेडियो जैसे मीडिया क्षेत्र में रेडियो जॉकी, रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर, रेडियो प्रोग्राम कंटेंट राइटर, आप इसके आलेखक, मतलब स्क्रिप्ट लेखक जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग टेलीविजन में कहते हैं, इसी के साथ आपके लिए टेलीविजन माध्यम है, टेलीविजन मैं आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बहुत ही ग्लैमरस मीडिया है जहां पर ना सिर्फ आप टेलीविजन समाचार चैनलों में रिपोर्टर, एंकर बन सकते हैं, आप उसमें करस्पोंडेंट बन सकते हैं, आप उसमें पीस टू कैमरा कर सकते हैं, आप उसमें समाचारों की गैदरिंग कर सकते हैं, बल्कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस जो है डिजिटल फिल्म मेकर बन सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल से लोग फिल्में बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, और इंटरनेशनल, नेशनल और आपके रीजनल जो साइंस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, यूथ फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में भी जो है सिनेमा और छोटे शॉर्ट वीडियो रील कॉम्पिटिशन होते हैं, वहां आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन बहुत ही सटीक और सक्षम तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा अवसर आपके पास वेब मीडिया का है, जिसको हम कंप्यूटर मीडिया भी कहते हैं या इंटरनेट आधारित मीडिया कह लीजिए, हम कन्वर्जेंस मीडिया के नाम से भी उसी को जानते हैं और डिजिटल मीडिया भी उसी को कहते हैं, जो हमारे बड़े स्क्रीन से आज हाथ में सभी के बच्चों के, युवाओं के, विशेष तौर पर जो मोबाइल है वो उनका कन्वर्जेंस मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। मोबाइल या छोटे स्क्रीन पर बहुत सारे सीरियल्स देखे जाते हैं, फिल्म में भी लोग डाउनलोड करके देखते हैं, बहुत सारी रील्स आती हैं, आप उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज हैं, एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स भी आप वहां देख सकते हैं, किसी पर्यटन क्षेत्र के बारे में अच्छे से आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी विषय को भी गहराई से समझा सकते हैं, आप एनिमेशन की सहायता करके भी, तो एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेब मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट, जिसको मुद्रित माध्यम, जो हमारा 100 साल से भी अधिक समय से मुद्रित माध्यम है, वहां पर आप जो अखबार हैं, और अखबारों में ना सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी अखबार हैं, आज तो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार हैं। अभी आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी 2020 आई है, उसके बाद से युवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में हम व्यावसायिक या प्रोफेशनल शिक्षा की बात करते हैं। तो ऐसे में हमारी बुंदेली भाषा हो, हमारी अपनी बघेली भाषा हो, हमारी अपनी अन्य, चाहे हमारी निमाड़ की भाषा हो, मालवी भाषा हो, उन सब स्थानीय भाषाओं में आज बढ़ चढ़ कर होता है। और उसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बिन्नू रडानी को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, धमाल में खूब कर रही हैं और खूब लोगों ने सुन रहे हैं और उनके श्रोता जने भी खूब हैं। तो बिन्नू रानी से प्रेरणा लेकर हम सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के, अपने घर की, अपने बुंदेलखंड की माटी की बिन्नू रानी जरूर बने।
0: बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम देखते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में भी कई सारे मतलब कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सों के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी, खासतौर पर 12th के बाद, जैसे कि इस क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा युवा साथी जाना चाहता है, तो कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको आसान तरीके से और किस किस क्षेत्र में वो कोर्स किए जाते हैं, वो सर विस्तार से।
1: मैं आपकी पुनः प्रशंसा करूंगा। दूसरा प्रश्न भी आपने युवाओं के हित में बहुत सटीक और बहुत अच्छा किया हुआ है। मैं इस बात पर आने ही वाला था। हमारे मखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो अपनी इस समय द वीक और इंडिया टुडे रैंकिंग में टॉप 10 मीडिया इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, वहां पर ढेर सारे पाठ्यक्रम हैं। उनके विस्तृत विवरण के लिए मैं सलाह दूंगा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के और रेडियो बुंदेलखंड के सुनने वाले श्रोताजन mcu.ac.in वेबसाइट को विजिट करें। हमारे भोपाल मुख्यालय परिसर है, इसके अलावा हमारा दतिया परिसर है, हमारा बघेलखंड में रीवा परिसर है, और निमाड़ में हमारा खंडवा परिसर है जो, और इसी तरीके से हमारा एमसीयू दर्शन टेलीविजन स्टूडियो भोपाल में और रेडियो करमवीर भी है, तो वो भी युवाओं को प्रैक्टिकल करने के लिए है। रहा 12th पास विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का, तो हमारे पास बैचलर कोर्स, जिनको हम यूजी पाठ्यक्रम कहते हैं, वो एनईपी आधारित 4 वर्षीय हमारे यूजी पाठ्यक्रम है। दतिया परिसर में हमारे पास बीए जनसंचार पाठ्यक्रम है और साथ ही बीबीए मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट हम दतिया परिसर में दे रहे हैं। खंडवा और रीवा परिसर में भी हमारे बैचलर पाठ्यक्रम है, और हमारे विश्वविद्यालय के बैचलर पाठ्यक्रम की हम बात करें तो हमारे पास बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास बीए जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग में है, जिसको हम बीए जेसीडब्ल्यू कहते हैं। इसके बाद हमारे पास बीए इन मीडिया रिसर्च है, बीए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, बीएससी फिल्म प्रोडक्शन है, बीएससी मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में है, बीएससी एनिमेशन में हमारे पास बीए मास कम्युनिकेशन है, बीए इंग्लिश जर्नलिज्म है, और हमने बीए हिंदी पत्रकारिता और अनुवाद प्रौद्योगिकी में भी इसी वर्ष से शुरू किया है, क्योंकि एनईपी में हमारी भारतीय भाषाओं पर काफी जोर दिया गया है। तो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी ने, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक थे, उस समय भी उन्होंने भारतीय भाषाओं पर बहुत काम किया था, और उसी से प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस अकादमिक सत्र 2024 में भारतीय भाषा, विशेष तौर पर हिंदी एवं अनुवाद प्रौद्योगिकी, हिंदी एंड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का एक बैचलर कोर्स शुरू किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम हमारे पास यूजी हैं, और इसी तरीके से हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है, जिसमें किसी भी स्नातक, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, होम साइंस का हो, फार्मेसी का हो, इंजीनियरिंग का हो, साइंस का हो, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उसके लिए एमए प्रसारण पत्रकारिता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एमए इन डिजिटल जर्नलिज्म है, एमए इन प्रिंट जर्नलिज्म है, एमएससी मीडिया शोध है, उसके बाद हमारा एमएससी न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, फिर हम एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी देते हैं, हमारे पास एमबीए इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है, हम एमबीए भी ऑफर करते हैं, एमए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी है, एमएससी फिल्म प्रोडक्शन है, एमए मास कम्युनिकेशन है, हम लोग एमलिव और बीलिव पाठ्यक्रम भी ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ मीडिया पाठ्यक्रम और हमारे पाठ्यक्रमों की एक विशेषता है।

0: हम लोग हर 2 साल में उनको अपडेट करते हैं, उनको मीडिया इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप उनको अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं। और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक है हाईली प्रोफेशनल है, और बीच बीच में विशेष व्याख्यान है मास्टर क्लासेस के लिए हम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, विद्यार्थियों के एजुकेशनल विजिट के लिए उनको टेलीविजन स्टूडियो है, प्रिंटिंग प्रेस है, रेडियो स्टेशन है, वहां की भी विजिट कराते हैं। बहुत जल्द ही हमारे दतिया परिसर के विद्यार्थी भी आपके रेडियो बुंदेलखंड का विजिट करेंगे, और हम इसी तरीके से अपने विद्यार्थियों के व्यवहारिक कामों के लिए उनको इंटर्नशिप पर भी अटैच करते हैं। तो समग्रता में हम मीडिया शिक्षा देने का प्रयास अपने परिसर में विद्यार्थियों को, ना सिर्फ हम मीडिया शिक्षण देते हैं बल्कि उनका चहुमुखी विकास 360 डिग्री उनका हम डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनकी जीके की तैयारी करवाते हैं, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं, उनको हम कैमरा फेस करने की टेक्निक सिखाते हैं, पीस टू कैमरा उनको सिखाया जाता है, उनको वक्तव्य कला जो है उनको मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि आप अपने गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई मूवमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ इंटरव्यू कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, इंटरव्यू कैसे दें, और आप में कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, इन सब बातों पर दिया जाता है। जैसे आपके रेडियो माध्यम में आवाज के आरोह अवरोह को, वॉइस मॉड्यूलेशन को, वॉइस कल्चर को, वॉइस डिलीवरी को, वॉइस को, क्योंकि कानों का माध्यम है तो इसमें आप रिपीट नहीं कर, इसमें आपके उच्चारण की शुद्धता चाहिए, भाषा की सरलता चाहिए, सटीकता चाहिए, साथ ही एक गति ऐसी चाहिए कि श्रोता आराम से सुन पाए, क्योंकि उसको दोबारा सुनने का, उसका अर्थ समझने का अवसर नहीं है जो प्रिंट माध्यम है। रेडियो माध्यम बहुत ही अलग माध्यम है, तात्कालिक माध्यम है, ताजा माध्यम है, क्योंकि इसमें इमीडिएसी का महत्व है।
1: बिल्कुल,
0: इसमें कोई भी अंतर वस्तु को आप बहुत तत्काल और ताजा अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं, और ये एक ऐसा माध्यम है कि आपका श्रोता अपने काम करते हुए सुन सकता है, वो अपने ऑफिस में, यात्रा के दौरान, कार चलाते हुए, अपने दफ्तर में, इवन गृहिणी अपने घर में भोजन पकाती हुई रेडियो माध्यम को सुन सकती है। इसलिए आज रेडियो माध्यम जो हमारा 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज भी लगभग 100 वर्ष होने को है, अगले 3 हम लोग 97 वर्ष रेडियो प्रसारण के भारत में कर चुके हैं, और रेडियो माध्यम आज भी पॉपुलर है, और हम देख रहे हैं कि देश में सामुदायिक रेडियो और कम्युनिटी रेडियो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री, वो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करती है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का रेडियो बुंदेलखंड स्टेशन से आज मैं इस कार्यक्रम को प्रसारित करने में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आभारी हूँ, और उन सभी श्रोताओं का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ जो आज इस रेडियो बुंदेलखंड के इस लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़े हैं।
1: सर, इसमें से बस चूंकि आपका समय अमूल है, हम जानते हैं सर, इसमें से भी 2% निकल के आते हैं। एक तो हमारे जो युवा साथी रहते हैं उनको मतलब ये रहता है कि हम लोग कोर्स करते रहें, साथ साथ में हमारे हाथ में जॉब होनी चाहिए, अच्छी से जॉब होनी चाहिए। दूसरा एक ये रहता है कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 वर्ष लगता है तो उतना समय नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे कोई कोर्स चलाए जा रहे हैं आपके माध्यम से कि वो उसको भी करते रहें और उसको अपना जॉब को भी देखते रहें। ये
0: जी, हम लोग चूंकि एक विश्वविद्यालय व्यवस्था के तहत हैं, उच्च शिक्षा अध्ययन के तहत हमारे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स हैं, तो उन सब की अवधि, तो उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम हमारा 1 वर्ष का है, माखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम है, जिनको आप mcu.ac.in पे जाके डिटेल विस्तृत विवरण देख सकते हैं। वहां पर हमारे डिजिटल मीडिया, रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जैसे भी कार्यक्रम है, और साथ ही हम जो है दतिया परिसर में बहुत जल्दी वहां पर अभी माननीय कुलपति जी एक कमेटी बना के उस पर तय कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक्टिंग में और रेडियो जॉकी भी यहाँ पर प्रस्तावित है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं में बहुत प्रतिभा है। बिन्नू रानी जैसे हमारे जो आज 8वीं पास हमारी बालिका धूम मचाई हुई है, तो उससे प्रेरित होकर अभी बहुत सारे युवाओं ने ये बात, मैं पिछले 2 दिनों से दतिया परिसर में हूँ तो विद्यार्थियों ने चर्चा के दौरान ये बात समझ में आई कि यहाँ पर फिल्म एक्टिंग को लेके और यहाँ पर रेडियो जॉकी के पाठ्यक्रमों की काफी मांग है, तो हम लोग भोपाल में इस पे विचार करके जल्दी यहाँ पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम रेडियो जॉकी पे, आरजे पर और एक्टिंग पर करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय समय समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम भोपाल में आयोजित करता है, अगर दतिया परिसर में आपके रेडियो बुंदेलखंड के संयुक्त तत्व

0: तत्वाधान में सहयोग से यदि बहुत सारे युवा सहयोग करेंगे, अभिरुचि दिखाएंगे और आप यदि हमसे सहयोग चाहेंगे तो हम अपने दतिया परिसर में आपको रेडियो जॉकिंग और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के ऊपर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, जैसा भी आप उपयुक्त संगे, 2 हफ्ते का हम लोग कर सकते हैं। और बहुत ही उसमें मतलब विद्यार्थियों से हमारा कोई उद्देश्य कमाने का नहीं होता है, तो हम उसको निःशुल्क आयोजित कर सकते हैं। पंजीयन शुल्क वगैरह कुछ न्यूनतम उसमें हो सकता है और उसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय से आपको जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी आवश्यक सामग्री है, जो प्रशिक्षण सामग्री है, किट वगैरह है, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी जब इस तरीके का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग जरूर उस पर विचार करते हैं और हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए यदि सेवा करने का अवसर रेडियो बुंदेलखंड के सहयोग से हमें प्राप्त होता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने छोटे समय में ही बहुत सारी हमारे युवाओं को प्रेरणादायक बातचीत बताई है, साथ साथ में उनके कैरियर को लेकर, उनके कैरियर काउंसलिंग को लेकर और खास तौर पर बहुत सारी ऐसी आपने बातचीत बताई है जिससे हमारे युवा साथी बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और इस क्षेत्र में अपने भविष्य बनाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर
0: रेडियो बुंदेलखंड और यहाँ की टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के भाई बहनों को, बिन्नुवन को हम जय का ऊंचा कि वे आए और जा क्षेत्र में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे बिन्नु रानी धमाल कर रही, आप और रन भी धमाल करें, जय बात के साथ, जय राम जी।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और अभी आपने डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को सुना जो HOD है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से, और उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे युवा साथी अपना कैरियर भविष्य बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा की है। बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ गए होंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी अपना करियर अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र को लेकर, और आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है, और खासतौर पर रील हुई और फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, साथ साथ में छोटे छोटे चैनल भी, हमारे यूट्यूबर चैनल जिसे कहा जाता है वो भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर, अपनी सच्चाई को दिखाकर, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम है, किस तरीके से अपना भविष्य बना सकते हैं, इस विषय को लेकर बड़े विस्तार से उन्होंने बात बताई है। इसके लिए डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, और हमारा पता है जो आप चिट्ठी के माध्यम से हमें अपने बातचीत को भेज सकते हैं। चिट्ठी पत्रिका का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगला के पास ओरछा, और आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: अपने पिता से वो आत्मा कह रही है,
1: वक्त आने से पहले ही ढल जाती मैं।
0: अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर उसके बावजूद भी दिक्कत थी तब

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

0: नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 समाचार सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का मैं आरजे वर्षा बहुत बहुत स्वागत करती हूं कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में। और साथियों, आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम एक अपना ऐसा कार्यक्रम होता है वो जी कार्यक्रम में अपन और अपने स्वास्थ्य से जुड़ी भई चर्चा होकर रहेंगे। और जो चर्चा अपन और इनके लाने बहुत महत्वपूर्ण होतेगी, क्योंकि हमारी जो बहनें हैंगी, महिलाएं हैं खासतौर से, वे क्या करती हैंगी के पूरे खानदान को ख्याल रखती हैंगी। सबको ख्याल रख लें लेकिन अपनों खुद को ख्याल रखो वे भूल जाती हैंगी। सो ऐसे में कहा होते कि उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैंगी, परेशानी आ जाती हैंगी, लेकिन वे अपनी परेशानी अपने घर वालों से साझा नहीं करती हैंगी। तो उनके लाने अपन और जो रेडियो बुंदेलखंड पे कार्यक्रम हर हफ्ता लेके आउट हैंगे, ताकि अपनी बहनों को तनक जानकारी मिले कि अपनो स्वास्थ्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते वो जितनों अपने बाकी लोगन को होते वो। ठीक है, तो आज हम जो विषय पे चर्चा करने वाले हैंगे वो है वो एचआईवी एड्स। ठीक है, तो अब इतने देखो बहुत सारी चीजें आती हैंगी कि एचआईवी के बारे में एक तो जानकारी बहुत कम रहुत हैगी, दूसरी जाहेगी कि इके बारे में कोनो बात ही नहीं करवो चाहुत है वो। ऐसा लगता है कि एचआईवी कह दे तो समझ लो कोनो दुश्मन को, जानी दुश्मन को नाम ले लो है वो। सो इसे हमें बात ही नहीं करने, लेकिन आज अपन और कार्यक्रम में एक विषय को लेकर बातचीत करेंगे। तो अपने संगे एक्सपर्ट आज ही कार्यक्रम में उपस्थित हैंगे। तो हम पहले अपने एक्सपर्ट जो आई हैं मैम हमारी, उनसे हम चाहेंगे अपनो परिचय भी हमारे श्रोता साथी अनुदी में।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋतु पांडे है। मैं, जैसा कि मैडम ने बताया, एचआईवी एड्स एक्सपर्ट हूँ झांसी क्लस्टर से। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा 12 अगस्त 2026 से 2 माह के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, सघन जागरूकता अभियान। इस अभियान का जो उद्देश्य है एचआईवी एड्स के प्रति सही जानकारी फैलाना, एचआईवी एड्स के लिए लोगों को प्रेरित करना जांच के लिए, और इससे जुड़े भ्रम एवं भेदभावों को दूर करना है।
0: बिल्कुल मैम, आपने एकदम सही कहा है और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस खास कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में। मैम, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं गांव में इस बात को लेकर, एचआईवी को लेकर, एड्स को लेकर, तो पहला सवाल यहां पर आता है कि एचआईवी क्या है और यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है।
1: एचआईवी यानी कि एक

0: होता है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि एचआईवी और एड्स में अंतर क्या है आखिरकार।
1: देखिए, एचआईवी एक वायरस है और एड्स एचआईवी संक्रमण की एक उन्नत अवस्था है, जिसमें कि शरीर में लक्षण आने लग जाते हैं विभिन्न बीमारियों के। हर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को एड्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। सही समय पर एआरटी दवाएं लेने से व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है और हो सकता है एचआईवी से एड्स की अवस्था से व्यक्ति पहुंच ही ना पाए।
0: बिल्कुल। तो मैम, जब भी कोई बीमारी की हम बात करते हैं या किसी वायरस की बात करते हैं या उसकी चपेट में हम आते हैं, तो हमारा पहला सवाल होता है कि आखिरकार इसके लक्षण क्या होते हैं या एचआईवी के जो संक्रमण होते हैं वो किन कारणों से फैलते हैं।
1: देखिए, एचआईवी मुख्य रूप से चार कारणों से फैलता है, जिसमें सबसे पहला कारण है संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। दूसरा कारण है संक्रमित रक्त या रक्त से बने उत्पाद के संक्रमण से। संक्रमित सुई या सिरिंज साझा करने से एचआईवी संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे को गर्भावस्था में, प्रसव या स्तनपान के दौरान यह बीमारी हो सकती है।
0: जी, यानी कि जहां पर हम बात करते हैं एचआईवी, तो वहां लोगों का दिमाग जो होता है वो एक ही जगह जाता है कि एचआईवी यानी के गलत तरीके से या असुरक्षित यौन संबंध इन्होंने बनाए होंगे, तभी जाके ये समस्या या बीमारी इनको हो गई है। तो कई बार तो लोग इसी डर की वजह से इस पर बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो मैम, अगर हम बात करें कि क्या एचआईवी जो है वो हाथ मिलाने से, साथ बैठने से या खाना खाने से भी फैल सकता है।
1: देखिए, बिल्कुल भी नहीं फैलता है, ये एक बिल्कुल सरासर मिथ है, भ्रांति है लोगों के मन में। हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ उठने बैठने से, साथ में खाना खाने से, एक बर्तनों का इस्तेमाल करने से, मच्छर के काटने से, कैसे भी सामाजिक संपर्क से ये नहीं फैलता है। इसलिए एचआईवी से जी रहे व्यक्ति के साथ हमें इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बीमारी से नहीं डरता है बल्कि आसपास का जो वातावरण होता है, जो व्यवहार हो जाता है लोगों का, उससे वो बहुत जल्दी ग्रसित हो जाता है और बहुत गंभीर परिस्थिति उसकी आ जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके आसपास क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ये बीमारी है, तो उससे जैसे आप नॉर्मली सबसे बात करते हैं वैसे ही उससे भी आपको बात करनी है। मैम, अगर इसमें हम एक चीज और आती है बचाव की, तो क्या एचआईवी से बचाव के लिए क्या सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाएं और कंडोम का सही और नियमित उपयोग करें। रक्त चढ़ाने से पहले कोई भी हमेशा उसकी जांच सुनिश्चित करें कि कहीं किसी एचआईवी संक्रमित का ब्लड तो आपको नहीं चढ़ाया जा रहा है। इंजेक्शन या सुई हमेशा नहीं इस्तेमाल करें, किसी के साथ भी सुई साझा ना करें। गर्भवती महिलाओं की समय समय पर एचआईवी की जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है, ताकि उसके होने वाले बच्चे को समय से, अगर किसी महिला को एचआईवी है तो समय रहते उसके बच्चे को कम से कम उस वायरस से बचाया जा सके।
0: जी बिल्कुल मैम, आपने एकदम सही कहा है। और ये बहुत खतरनाक होता है जब एक मां से बच्चे में ये बीमारी फैलती है। मैम, इसकी जाँच की अगर हम बात करें तो कब और कहाँ कराई जा सकती है इसकी जाँच?
1: यदि किसी व्यक्ति को एचआईवी का जोखिम, संक्रमण का जोखिम हुआ है या वो अपनी एचआईवी स्थिति के बारे में जानना चाहता है, तो एचआईवी की जांच करानी चाहिए। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आईसीटीसी सेंटर, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर होते हैं, जहां पे जांच और परामर्श निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। जांच के लिए किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में जाकर इसकी जानकारी ली जा सकती है।
0: बिल्कुल, और सरकार इन चीजों को लेकर बहुत अवेयरनेस भी फैला रही है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, अखबार हो, न्यूज़पेपर, कुछ भी हो, हर जगह एचआईवी के आपको पोस्टर लगे मिलेंगे कि हमें अवेयर रहना है, सुरक्षित रहना है। हर चीज आपको, यहाँ तक कि फ्री में सारी फैसिलिटी दे रही है, फ्री में आपका पूरा इलाज भी करा रही है सरकार। लेकिन फिर भी मैम, अगर हम इसमें देखें कि लोग जांच कराने में झिझकते क्यों है आखिरकार?
1: ये इसका जो मुख्य कारण है एचआईवी को लेकर, समाज में फैली हुई गलत धारणाएं, डर और कलंक है। कई बार लोग यही सोचते हैं कि एचआईवी की जांच कराने का मतलब है सीधा कि मुझे एचआईवी है, जबकि ऐसा नहीं है। जांच कराने का मतलब होता है हम अपने स्वास्थ्य की स्थिति को जानने के लिए जांच कराते हैं, ताकि अगर हम समय पर इसका उपचार शुरू करें और एचआईवी की जांच की जानकारी और परिणाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है, इसकी जानकारी किसी को भी साझा नहीं की जाती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारे साथ एक सर और भी हैं जो इस पर विस्तार पूर्वक से और जानकारी देंगे।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है।

0: इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं चाहूंगी कि आप भी अपना थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय हमारे श्रोताओं को जरूर दीजिए।
3: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो बुंदेलखंड को। जी, मेरा नाम शैलेन यादव, मैं क्लिनिकल सर्विस ऑफिसर और दिशा क्लस्टर झांसी से हूँ, और आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आमंत्रित किया, इसका आपको अपना बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: जी सर, सर मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि हम यहाँ पर एचआईवी की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की यहाँ पर एचआईवी की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है तो उसे आगे क्या करना चाहिए?
3: देखिए मैडम, जैसा कि हमारी अभी कई आपने प्रश्न किए हमारी मैडम से, उन्होंने कई विषय में आपको एचआईवी के विषय में बताया। यदि इस विषय में यदि कोई व्यक्ति या महिला या कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले उसे धैर्य या घबराना चाहिए नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी घबरा जाए, धैर्य अपना आपा खो दे। सबसे पहले उसको अपनी जांच सुनिश्चित करनी चाहिए यदि पॉजिटिव आ रहा है। इसके साथ साथ ही वो यदि संक्रमण की पुष्टि उस पर पॉजिटिव आती है तो व्यक्ति को संबंधित अपने नियरेस्ट आईसीटीसी केंद्र से जाकर के वो एआरटी सेंटर चला जाए, वहां पर वो आवश्यक परामर्श ले। इसके साथ ही साथ वो एआरटी की दवा नियमित रूप से लेना चाहिए, एवं एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति का जीवन उतना ही है एक सामान्य व्यक्ति के इतना जितना वो एचआईवी पॉजिटिव का व्यक्ति होगा।
2: जी सर, इसमें एक और बात यहाँ पर आती है कि क्या एचआईवी का इलाज संभव है, क्योंकि कई बार मन में ये सवाल आते हैं लोगों के कि एचआईवी हो गया मुझे तो अब मुझे मरना संभव है, तय है मतलब मेरा मरना। तो जो एआरटी दवाएं मिलती हैं वो किस तरह से मदद करती हैं लोगों की एचआईवी में?
3: देखिए मैडम, जैसा कि एआरटी से या कोई भी एचआईवी व्यक्ति से नहीं मरता है, ये तो एक मिथ्या है। वर्तमान समय में एचआईवी को जो शरीर में अगर पहुंच रहा है व्यक्ति के शरीर में, यदि एचआईवी का वायरस आ गया है तो उससे क्या है कि हमारी एआरटी की जो दवा है वो उस वायरस को नए वायरस से पनपने से रोकती है। जो हमारा एंटी रेंटोवायरल थेरेपी है एचआईवी को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है। एआरटी की दवा जो है वायरस की मात्रा को कम करती है, रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको सुदृढ़ करती है, मजबूत बनाती है, साथ ही साथ व्यक्ति को लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने में सहायता प्रदान करती है, और इसके साथ ही हमारे नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है।
2: जी सर, यहाँ पे अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो अगर एचआईवी संक्रमण होने पर बच्चे को संक्रमण से कैसे बचाया जा सकता है, यानी कि महिला में अगर ये संक्रमण पाए गए हैं तो उसके जो बच्चा है गर्भ में उसको कैसे इस संक्रमण से बचाया जा सकता है?
3: जी मैडम, इसके लिए क्या है कि गर्भावस्था में जब भी कोई गर्भवती महिला हमारी गर्भावस्था में हो उस समय उसका एचआईवी का टेस्ट अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उस गर्भावस्था के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी एचआईवी की जांच जरूर सुनिश्चित करवा लें। यदि कोई महिला एचआईवी पॉजिटिव पाई जाती है तो जल्द से जल्द उसको एआरटी के लिए उपचार के लिए जोड़ा जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह से उसका प्रसव और उसके बच्चे की देखभाल की जाती है, जिससे कि माँ और उसके होने वाले बच्चे को एचआईवी के जोखिम को कम किया जा सके।
2: बिल्कुल सर, हम देखते हैं कि समाज में एचआईवी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां और भ्रम फैले हुए हैं, तो आप अक्सर क्योंकि फील्ड में काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, मिलते हैं, तो वे कौन सी भ्रांतियां और भ्रम होते हैं जो आपको अधिकतर और धारणाएं होती हैं जो सुनने में और देखने में आती हैं एचआईवी को लेकर?
3: जी, सबसे पहले तो भ्रम यह है कि एचआईवी छूने से नहीं होता है, साथ बैठने से नहीं होता है, गले लगने से, साथ में भोजन उसके साथ खाने से, इवन दैट उसके साथ उसके कपड़े यूज करने से, वॉशरूम यूज करने से, ये सारी मिथ्याएं हैं। इसके साथ एचआईवी का कोई भी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे शरीर में नहीं पहुंच सकता है। साथ ही साथ उपचार और नियमित एआरटी के साथ व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकता है, इसलिए हमें इन अफवाहों से बचना चाहिए और साथ ही साथ वैज्ञानिक सलाह पर हमें विश्वास करना चाहिए।
2: यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी है, मैं उसके साथ खाना खा रही हूँ, बात कर रही हूँ, उसके साथ एक ही घर में रह रही हूँ, तो मुझे कोई खतरा उससे नहीं है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और मैं सामान्य उसके साथ भी वही बर्ताव करूँ जो बाकी सदस्यों के साथ कर रही हूँ। तो सर, इसमें एक और बात आती है कि अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ परिवार और समाज को कैसे व्यवहार करना चाहिए?
3: जी, एचआईवी से जी रहे व्यक्ति के साथ सम्मान, सहयोग और सामान्य व्यवहार करना

0: चाहिए, साथ ही साथ उसके अलग अलग अलग या थलग भेदभाव नहीं करना चाहिए। परिवार का भावनात्मक सहयोग उपचार को नियमित रखने में बहुत मदद करता है। हमें बीमारी से बचाव करना चाहिए, व्यक्ति से दूरी नहीं बनानी चाहिए।
1: जी सर, आजकल हम देख रहे हैं कि युवा वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होता है, लेकिन क्योंकि जब जांच की बारी आती है और खासतौर से किसी ऐसी बीमारी की, HIV जैसी बीमारी की, तो युवा हमारे सबसे पीछे भागते हैं, वो आगे नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बात चार लोगों में फैलेगी, मेरे दोस्तों को पता चलेगी तो मेरी छवि क्या बनेगी दूसरे लोगों के सामने। तो सर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो युवा है उनको HIV से बचाने के लिए आपका क्या संदेश होना चाहिए?
0: जी, मेरा तो युवाओं से यही संदेश है कि HIV के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें, गलत धारणाओं से बचें, अफवाहों से बचें, जिम्मेदारी और सुरक्षित व्यवहार अपनाएं, किसी भी जोखिम की स्थिति में बिना डरे झिझक के HIV की जांच कराएं। सही जानकारी, सुरक्षित व्यवहार और समय समय पर HIV के बचाव की महत्वपूर्ण साधन अपनाए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को आज के इस कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में दी हुई है। अंत में सर, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या जागरूकता संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मेरा सभी श्रोताओं से यह संदेश है कि HIV के बारे में जानकारी रखें, HIV की जांच को लेकर डरे नहीं, जरूरत पड़ने पर आप उपचार लें, साथ ही HIV से जी रहे लोगों के साथ भेदभाव न करें बल्कि उनका सहयोग करें। यदि HIV छूने से नहीं फैलता है, न गलत जानकारी से फैलता है, हमें साथ ही साथ एक हमारा हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है जिसमें जिसका वो नंबर है 1097, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी आपको HIV के विषय में जानकारी चाहिए या लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल करें, जिससे भी जो भी आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, उसको आप पूछ सके और अपनी धारणाओं को, मिथ्याओं को दूर कर सके।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी दूर से चल के हमारे इस कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी ने दी हुई है। और हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद हमारे जो भी श्रोता हैं, जिनके मन में कुछ भी भ्रांति या भ्रम चल रहे होंगे, वो जरूर क्लियर हो गए होंगे। अगर आप और अधिक जानकारी हमसे चाहते हैं तो जरूर हमें कॉल करिए, हमारा नंबर है 9219207749। और सर ने जो नंबर आपको बताया था, एक बार फिर से सुन लीजिए सर, एक बार फिर से वो नंबर बताएंगे, टोल फ्री नंबर
0: जी है। हमारा टोल फ्री नंबर है 1097 1097।
1: इस नंबर पर आप टोल फ्री है, आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा, तो फ्री में आप अपनी जानकारी इससे ले सकते हैं। आपको आपकी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी, तो बेझिझक होकर आप जानकारी ले सकते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह से जाने का होता है समय, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। फिर होगी आप सभी से मुलाकात एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को आपके रेडियो साथी मनीष की दो हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम पहुंच जावे। और किसान भाइयों कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे सभी किसान पंच भैया बहनें अच्छे हुई हैं, खुशहाल हुई हैं। और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे किसान साथियों की जो इस बार ज़्यादा बरसात को हो गई हैगी, तो ऐसे बरसात में हमारे बहुत सारे किसान साथी ने अपनी बोनी भी नहीं कर पाई है, तो कई किसान हमारे मायूस भी हुई हैं और कई किसान खुश भी हुई हैं कि अच्छा पानी गिर गया है और आगे की फसल को हम अच्छी तरीके से और जल्दी से और जो टाइम बुवाई को रहते हैं वो टाइम पे अपन बुवाई कर लेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैंगे, जो भगवान जो रथ हैंगे और भगवान के संगे संगे जो अपना पर्यावरण बदल रहा है वो कछु ना कछु तो विचार हमें जा पे करें चाहिए कैसे पर्यावरण बदलत है वो, और पर्यावरण बदलवे से जे सारे नुकसान देख वेखो और सुन वेखो मिलत हैंगे। लगातार कितने दिन से अपने यहाँ बरसात हो रही है और इतना पानी चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है वो, तो खुशी की बात भी है और दुख जा बात को है कि किसान साथियों की मोनी नहीं भैयेगी। आज हम हमारे किसान साथियों के लाने गेंदे की खेती कैसे भी कर सकते हैं, कैसे फूलन को व्यवसाय भी एक व्यवसाय रथ है वो और खेती भी रथेगी, और जो अपने एग्रोफॉरेस्ट्री करते हैं यानी कृषि वानिकी जो करते हैं, बीच बीच में अगर हम गेंदन के पौधा लगा देंगे तो सीजन भी आ रहा है वो, और सीजन में वे गेंदन के जो फूल रहते हैं काफ़ी अच्छा मार्केट भी हमें मिल सकता है वो, तो यही विषय पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जासे पहले अपन एक नज़र डाल लेते हैंगे मौसम चक्र पे, कैसे मौसम जो अपनो का कथ है वो, मौसम हमारे लाने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है वो, तो मौसम की जानकारी भी अपन सुनो। तो सबसे पहले अपन बता रहे हैंगे मौसम की जानकारी, हमारे संगे हैं वर्षा, तो वे मौसम की जानकारी हमें बताएं।
1: श्रोताओं नमस्कार, जब मौसम की जानकारी हम आपको पहुंचा पा रहे हैंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। साथियों, उड़द व मूंग की फसल में जड़ सड़न रोग देखो जा रहा है वो, अतः किसान भाई के लाने फसलन को निगरानी करत रहे, साथ ही में खेत में पाए जावे बारे रोकथाम हेतु 2.5 ग्राम मैनको जैव दवा की मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ हुए पे छिड़काव जरूर कर देवे। साथियों, आवे बारे 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाये रहने की संभावना हैगी। दिन के अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात को न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना हैगी। हवा की औसत गति 14 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आवे बारे 3 दिनन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाये रहने की संभावना भी हैगी। इको ध्यान में रखत भय सब्जियन में दलहनी तथा तिलहनी फसलन में जल भराव की समस्या हो सकत हैगी, अतः किसान भाई जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लेवे। संगे में कीट व्याधियन के लाने निगरानी को कार्य भी करत रहे, साथ में यदि जरूरी हुए तो किसान भाई दवा को छिड़काव करत रहे समय पे। इमें 1 लीटर टी पॉल भी मिला लेवे। इस समय धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लाने खरपतवार नियंत्रण हेतु 20 पाई रीबैंक

0: सोडियम 250 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करवें तथा पहले से लगाई गई धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना बनी हुज्जे। यदि दिखें तो कारटप हाइड्रोक्लोराइट 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालवें। जिन किसान भैयन की टमाटर मिर्च तथा बैगन आदि की पौध तैयार हैगी वे इनकी रोपाई मेड़न पे यानी उथली क्यारियन पे करवें। बादल छाए रहवे की संभावना को ध्यान में रखत भय कद्दू वर्गीय सब्जियन में फली छेदक कीट जैसे फली मक्खी फली बग और प्लम्ब मोथ कॉपर को भी देखने की संभावना बनी हैगी। ईखो नियंत्रण करवे के लाने प्रोफेनोफॉस 50 ईसी 1500 मिली हेक्टेयर खो 600-700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देवे। बैगन में फल छेदक कीट को प्रकोप भी देखो जा रहा है वो ई के नियंत्रण हेतु क्लोनाफॉस 25 ईसी दवा की 2.0 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव साफ मौसम में कर देवे। अरबी में कंदगलन रोग को प्रकोप देखो जा रहा है गो। सो साथियों ई के लाने बचाव हेतु आपको मेटालेक्जिल मैनको जेब दवा को 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ हुए पे छिड़काव करवे। पशुओं को ज्यादा हरी घास ना खान देवे नहीं तो अफरा की समस्या भी हो सकत हैगी। आसमान में बादल छाए रहवे के कारण धूप की अवधि में कमी को देखत भय किसान भाई मुर्गी घरन में रात के समय 4-5 घंटा रोशनी की व्यवस्था कर देवे तथा इनके दानन में ऊर्जा और विटामिन की मात्रा बढ़ावे संगई में कैल्शियम भी मिला के दे देवे। तो किसान भाइयों आप सब जने सुन रहे थे जानकारी मौसम आधारित जानकारी और जानकारी आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से। नमस्कार।
1: तो साथियों अभी आपने हमारे वर्षा जी से मौसम आधारित जानकारी को सुना और जानकारी हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो गेंदा की खेती पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसे चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और गीत के बाद आपको सीधा विषय विशेषज्ञ के पास ले चलेंगे और उनसे जानेंगे किस तरीके से गेंदे की खेती कैसे सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, क्या क्या किस तरीके से हमें लगाने और विधि क्या हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: मेरी गोल्ड फार्मिंग, गेंदे की खेती कब और कैसे करना चाहिए, बेस्ट वैरायटी जो कि हाइब्रिड किस्में हों। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से कैसे आप गेंदे की मेरी गोल्ड फार्मिंग की एडवांस खेती, वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, स्प्रे खाद उर्वरक की मात्रा, एरीगेशन फर्टिगेशन के साथ साथ खरपतवार की रोकथाम, उत्पादन लागत, मुनाफा और नेट प्रॉफिट के साथ साथ लाइफ साइकिल।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैरीगोल्ड फार्मिंग वैसे कई सारे किसान करते आए हैं और कई सारे राज्यों में होती है, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात दो तीन चीजें हैं। मैं ऐसा जानता हूं और हमने महसूस किया है, कई किसानों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो गेंदे की फूल की खेती के साथ कुछ दो तीन बातें जुड़ी हुई है जो सबको नहीं पता है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो मैं उस टॉपिक के बात करूंगा। वैसे बहुत आसान खेती है, लेकिन उसमें पैसा कमाना और पैसा बनाना, जमीन को सुधारना, पेस्ट डिसीज कंट्रोल करना, वो सब साथ में उसके फायदे जुड़े हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक में दो तीन टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनना, अंत तक बने रहना ताकि आप कोई चीज मिस ना कर जाए। तो गेंदे की फूल की खेती मुनाफाकारक बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो है वो चीज है बुवाई का समय। तो बुवाई का समय कब करना चाहिए ताकि आपको रेट ज्यादा मिले, तो उसका एक जानकारी है, दूसरी वेराइटी, तीसरी चीज है उसमें थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट और उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर पे बिजाई कब करें। किशन भाइयों, नॉर्मली गेंदे का फूल ट्रांसप्लांटिंग के बाद 40 से 45 दिन में पहला फूल दे देता है और उसके 15 से 20 दिन में 2 से 3 तुड़ाई हो सकती है। कोई अच्छी ट्रीटमेंट चलती है तो पहले 45 दिन के बाद और 20-25 दिन आप आगे ले सकते हो। तो गेंदे का फूल आप मानो कि टोटल हम 60 दिन, 2 महीने का पीरियड गिनते हैं कि प्लांटिंग से लेके पहला फूल और वहां से 15 से 20 दिन नॉर्मली, तो टोटल 60 दिन पकड़ते हैं हम। तो आपको सबसे ज्यादा रेट कब मिलेंगे, गेंदे के फूल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कब होती है? तो नॉर्मली ऐसा महाराष्ट्र में कहते हैं दशहरा से दिवाली के आसपास में अगर आपको फूल चाहिए तो आपको बिजाई करनी चाहिए। कब? तो कि आपको रक्षाबंधन में बिजाई करनी चाहिए। बहुत सिंपल गणित है, रक्षाबंधन के दिन आपने ट्रांसप्लांटिंग किया, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझो कि 15 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया, तो 15 अगस्त से 2 महीना, मतलब 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, यानी कि नवरात्रि, दशहरा या दिवाली के आसपास आपको फूल मिलेंगे। ये एक नॉर्मल कहानी है। आपको गणपति भी चाहिए तो उससे और 15-20 दिन पहले प्लांटिंग करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हिंदू कैलेंडर के आधार पे जो त्योहार आते हैं, हमारे रिलीजियस फंक्शंस जो आते हैं, और उसके बाद शादियां शुरू हो जाती है, दिवाली के बाद शादियों का मौसम होता है। तो किशन भाइयों क्या है कि आपको 60 दिन पहले उसके प्लानिंग है। अभी इस बार की बात करें तो इस बार दशहरा दिवाली कब है वो कैलेंडर के आधार पे हमको प्लांटिंग सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी इस बार मान लो कि नवरात्रि की शुरुआत होती है लगभग 22 सितंबर से, लगभग 2 या 3 तारीख को दशहरा आएगा और उसके 20 दिन के बाद यानी कि अक्टूबर के एंड में आपको दिवाली आएगी। तो आपको समझना है सितंबर की 15 तारीख से लेके अक्टूबर की एंड तक ये डिमांड रहेगी।

पूरा 1.5 महीना। तो आपका प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए कब? तो कि लगभग लगभग 20 सितंबर से शुरू होना चाहिए प्रोडक्शन। तो आपको कहीं ना कहीं 15-20 दिन चला या 1 महीना चला, जितना चला पाए, तो दिवाली तक खींच सके तो खींच लो। तो वैसे आप प्रोडक्शन का प्लान करती हो तो वहां से आप 60 डेज माइनस करो, या तो एग्जैक्ट फर्स्ट डे से तो 45 डेज माइनस करो, 22 सितंबर से 45 डेज माइनस। तो अगस्त और सितंबर के 22-22 दिन निकाल दो, तो 8 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया तो आपका गेंदे का फूल का प्रोडक्शन शुरुआत हो जाएगी नवरात्रि के अंदर, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा। दशहरे के दिन आपको ज्यादा प्रोडक्शन आएगा, उस दिन डिमांड भी ज्यादा रहती है, और उसके बाद में दिवाली पे भी आपका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन आएगा। तो ये एक आयोजन ऐसा है, सबका अच्छा हो गया तो हो सकता है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा 2-3 टप्पे में भी प्लांटिंग करते हो तो भी चलेगा। तो आप कुछ अगस्त के पहले वीक में करो, फिर अगस्त के दूसरे वीक में करो, एक अगस्त के तीसरे वीक में करो, ऐसा करोगे तो भी चलेगा। तो ऐसा करने से आपको एक बेनिफिट हो सकेगा, आपकी खेती में फूल लंबे अरसे तक थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े निकलते रहेंगे। तो मार्केट का फ्लक्चुएशन कम से कम लगेगा, तो आपको ओवरऑल रेट मार्जिन थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। अभी उसका एक सिंपल गणित मैं आपको बताता हूँ। 1 एकड़ के अंदर मानो कि आपने प्लांटिंग किया है तो तकरीबन 6,000 से 7,000 पौधे आएंगे। 6 स्क्वायर फीट में एक, यानी कि 3 से 3.5 फीट में लाइन आएगी और 1.5 से 2 फीट में आपको लगाना है। तो 6 स्क्वायर फीट में एक पौधा फैलेगा अच्छी तरह से, तो आपको 42,000 स्क्वायर फीट का 1 एकड़ होता है, 43,560। लगभग आप ऐसा गिनते हो तो 7,000 जितने पौधे आएंगे। 7,000 पौधे में से मानो कि 1,000 पौधे को बॉर्डर इफेक्ट, मर गया, डिसीज लग गया, और नॉर्मली आपके 6,000 बच गए, मैं तो बोलता हूँ 5,000 भी बच गए, और 750 से 1 किलोग्राम वजन दे देता है, 4 से 5 टन वजन आता है, 50 रुपये किलो रेट भी रहता है, 100 रुपये भी रहता है। मैं तो ऐसा गिनता हूँ, एक नॉर्मल हिसाब करते हैं कि 4,000 किलो आपका प्रोडक्शन आया 1 एकड़ में से, और आपको ज्यादा नहीं केवल 20 रुपये का एवरेज आया तो भी 80,000 का होता है। 10 रुपये भी रेट रहा किलो का तो भी 4,000 किलो का प्रोडक्शन आया, 40,000 का हुआ। ये सिर्फ 60, 65 और 70 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 80 दिन तक चलता है, उससे ज्यादा चलता भी नहीं। तो ये खेती एकदम, जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में, कि जैसे कैच क्रॉप है, आपने लगाया और तुरंत ले लिया वो वाली है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बाबत ये है कि पहले नंबर पे आप कोई एक रंग का पसंद मत करो, मल्टी कलर में करो, यानी कि नारंगी वाला भी करो और पीला वाला भी करो। तो मार्केट में जिसका डिमांड ज्यादा होगा, एक का कम होगा, एक का ज्यादा होगा, कभी क्या होता है आपको पता नहीं, हमको पता नहीं, मार्केट कहाँ पे ट्रेंड करता है, लेकिन दोनों लेके जाओगे आपका बिक जाएगा। कभी किसानों को ऐसा भी होता है कि कोई दिन 2-2 रुपये किलो भी बेचेंगे, तो कभी ऐसा होता है कि कभी 100-100 रुपये किलो भी बेचेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया है, वैसे आप 2-3 फ्लक्चुएशन को टालने के लिए, कि एक तो 2 कलर का करो, 3-4 टप्पे में करो, जैसे मैंने कहा अगस्त के पहले वीक में किया, दूसरा थोड़ा सा मतलब 1 एकड़ का प्लानिंग है तो 1/3 एकड़, यानी कि 10-15 गुंठा में अगस्त में पहले वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा में अगस्त के दूसरे वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा तीसरे वीक में किया, तो आपका गणपति से लेके दिवाली तक का प्रोडक्शन सेट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमको खुद को ऐसा एक्सपीरियंस है, गणपति में रेट नहीं मिला उस दिन, उस साल सबका अच्छा हुआ था, फिर रेट नहीं मिला तो सबने निकाल दिया, हमने रखा था, वैसे भी खर्चा कर चुके थे तो रखा था, तो दिवाली पे हमको रेट ज्यादा मिला तो हमारा पूरा खर्चा ले आया। ऐसा था कि हमने 2 रुपये किलो बेचा था और 120 रुपये किलो भी बेचा। तो ऐसा फ्लक्चुएशन टालने के लिए आपको कुछ डिसीजन भी बाद में लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने ऐसा बताया कि 2 वेराइटी करो, 2-3 टप्पे में प्लांटिंग करो, तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसमें वो खाद वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गेंदे का फूल है वो इल्लियों को आकर्षित करता है, खास करके पतंग को अंडे देने के लिए आकर्षित करता है, तो उसमें हरी इल्ली आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो आप उसके लिए छिड़काव का कुछ प्रबंध कर सकते हो। नॉर्मली शुरुआत में थ्रिप्स आती है तो थ्रिप्स के लिए कोई प्रबंध कर सकते हो, अल्टरनेटिव ब्लाइट वगैरह आता है तो उसको कोई प्रबंध कर दे सकते हो। खाद भी बहुत इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन फिर भी डाली की फूटान, वृद्धि विकास, कलर क्वालिटी, उसके लिए आपको चाहिए तो आप 1 एकड़ में 1 बैग DAP, 1 बैग पोटास पहले से डाल दो,
बाद में डालने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फटाफट फटाफट फटाफट कार्यक्रम होता है इसमें 60 दिनों में, तो मतलब 45 दिनों में फ्लावरिंग आता है, 60 दिनों में पीक जाता है, फिर धीरे धीरे धीरे कम हो जाता है, 70-80 दिन में तो खत्म हो जाता है। मतलब पूरा 3 महीने की भी फसल है नहीं, 1.5 महीने में शुरू और 3 महीने में से पहले खत्म, ऐसी फसल है। तो आपको पहले से 1 बैग DAP 1 बैग पोटाश डाल दो, मजबूती के लिए पोटाश भी जरूरी है, तो कलर के लिए भी जरूरी है, और बाद में 1-2 स्प्रे आप न्यूट्रिशन का ले सकते हो कि जब आप डाली फुटन की अवस्था में हो तो आप हॉस्टल ले लो कि ज्यादा से ज्यादा डाली फुटन का ग्रोथ जल्दी जल्दी आ जाए, और जैसे ही 40-45 दिन हो जाए तो एक माइक्रोग्रेन का ग्रेड आप दे सकते हो, जैसे महाराष्ट्र में ग्रेड 2 है, गुजरात में ग्रेड 4 है, जो आपके राज्य का आपका जो भी ग्रेड है आप माइक्रोग्रेन का स्प्रे कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो आप स्टेलर वगैरह ले सकते हो, जिसके बाद वृद्धि विकास के साथ नंबर ऑफ फ्लावर भी बढ़ जाए। वृद्धि विकास ज्यादा हो रहा है तो 0-34 का प्रयोग करो, अगर ऐसा नॉर्मल है तो कोई जरूरत है नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है फर्टिलाइजर वगैरह में, कुछ ना करो तो सिंपल, पहले बेसल डोज में संचार डाल दो, बाद में भूमिका डाल दो, और उसके साथ में थोड़ा सा पहले DAP डाल दो आधी बैग, और बाद में थोड़ा आधा बैग यूरिया डाल दो, थोड़ा सा पोटास डाल दो तो भी चल जाएगा। खाद का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्लांट डेंसिटी मेंटेन करना। आपको 7000 प्लांट मेंटेन करने पड़ेंगे तो ही फ्लावरिंग अच्छी है। 2 वेराइटी अलग अलग करो, 2-3 टप्पे में करो, तो आपको ये मुनाफे वाली खेती हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जैसे मैंने कहा है कि 4 टन तो मिनिमम उत्पादन आता ही आता है, 4000 किलो, और उसके बाद में आप अच्छी सी मेहनत कर लेते हो तो थोड़ा उत्पादन बढ़ने की भी संभावना है, और आपका नसीब लग गया और 4 टन में से 1000 भी टन 30-40 रुपए किलो चला गया तो 30-40 हजार तो उसी पीकिंग का आ जाएगा, बाकी का 20-30 हजार दूसरा आएगा, तो 50-60 हजार प्रति एकड़ 2-3 महीने में आ सकता है। अभी आते हैं ना दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया ये फसल उस पेस्ट को आकर्षित करती है, यानी कि हरी लीप की जो पतंग होती है उसको आकर्षित करती है अंडे रखने के लिए। तो ये आप कोई भी ऐसी फसल लगाई है, जैसे कि वेजिटेबल्स लगाया है या तो अरहर लगाई है, तो उसकी बॉर्डर पे कर दो, या तो एक एक लाइन छोड़ के एक एक में करो। तो अरहर वगैरह लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 4-5 महीने का फसल है, बैगन वगैरह 4-5 महीने का फसल है, तो उसकी बॉर्डर पे आप लगाते हो, या तो 2-3 लाइन लगा के लगाते हो, तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम 45-60 दिनों में हो जाएगी, प्लस उसके साथ ही साथ में वो इल्लियों को आकर्षित करता है, तो वहां इल्लियां ज्यादा आएगी, तो आप दवाई उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो, और आपको निगरानी में भी रख सकते हो कि भाई यहाँ भी इल्लियां ज्यादा है तो अभी आगे अपनी मुख्य फसल में भी इल्लियां आएगी, तो एक ट्रैप क्रॉप की तरह भी आप उपयोग कर सकते हो इसको। दूसरा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जमीन के अंदर निमेटोड कंट्रोल करता है। लोगों के अलग अलग विचार है इसमें, कि ऐसा बोलते हैं कि भाई इसमें निमेटोड ज्यादा आ जाते हैं इसलिए मुख्य फसल में नहीं आते, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो हमको सुगंध आती है वो अल्कलॉइड है, और वो कहीं ना कहीं निमेटोड के लिए जहर है, मतलब वो खाने से रोकता है, और खास करके हमने ऐसा देखा है, ये हमारा अनुभव है, गलगोटा जिसको बोलते हैं देसी वाला, उसमें थोड़ा वो प्रमाण ज्यादा होता है जड़ों में। और अगर आप वो पर्पज से कर रहे हो, तो जैसे मैंने बताया कि निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए कर रहे होगे, जैसे कई किसान भाई हमने देखा है कि राजस्थान में चोमू वाले इलाके में, ये गुजरात में अगर आते हैं तो ईडर के आसपास के इलाके में, मेहसाणा के आसपास में आते हैं, राजकोट के आसपास में, बड़ौदा के आसपास में, महाराष्ट्र में आते हैं तो ये नारायणगांव के आसपास में इलाके में, जमीन में मीडियम टू लाइट सॉइल है, जमीन उपजाऊ बहुत है, तो मीडियम टू लाइट सॉइल मतलब निमेटोड ज्यादा। इवन चिली वाला एरिया, कहीं पे भी चिली मिर्ची वगैरह होती है, लौकी वगैरह होती है, कुकुरबिटेसियस फैमिली का होता है, वहां जमीन में निमेटोड बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप एक मानसून सीजन में इसकी खेती करो, और थिक डेंसिटी, जैसे मैंने बोला नॉर्मल कॉमर्शियल फार्मिंग करने के लिए आपको 6-7 हजार पौधे लगाना है, इसमें 10 हजार पौधे लगाना है, और देसी वाला गलगोटा कर देना है, आपका एक सीजन जाएगा, लेकिन लगभग लगभग निमेटोड से 80-90% शांति मिल जाएगी। ये ट्रीटमेंट ऐसी है कि मानो कि कुछ ना किया, आपने 8-10 हजार पौधे लगाए हैं, तो आपका 4-5 टन प्रोडक्शन आ गया, और 10 रुपये भी रेट आ गया, तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, और ऊपर से फ्री में निमेटोड कंट्रोल हो जाएगा। वैसे कई किसान भाइयों को पता होगा कि निमेटोड की दवाइयाँ बहुत महंगी आती है, मल्टीपल टाइम ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता, जब ट्रीटमेंट किया है तो 10-15 दिन 1-2 महीना अच्छा लगता है, फिर दूसरी चीज में दूसरा प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत अच्छा
आइडिया है जो आप कर सकते हो कि आप

खेती कर लो, थोड़ा थिक डेंसिटी प्लांटिंग करो, और उसमें जमीन में जब ये इसका जो मटेरियल जाता है जिसको रूट एक्सुडेट बोलते हैं, उससे निमेटोड को खाने में बहुत तकलीफ होती है, उसको एवॉइडेंस बोलते हैं, कि मतलब कॉन्टेक्ट, जड़ से कॉन्टेक्ट जो होना है वो होता नहीं, हुआ तो भी बहुत इन्फेक्शन होता नहीं। ओवरऑल कहने की बात यह है कि ये निमेटोड को मैनेज करने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम वनस्पति है, इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो मैंने तीन पार्ट बताए, एक पार्ट ऐसा है कि इसकी खेती में मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट ऑफ सोइंग है, कि कब सोइंग करोगे तो कब प्रोडक्शन आएगा। तो मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से ऐसा है कि अगस्त के पहला, दूसरा या तीसरे पखवाड़े में किया तो आपको फायदा होगा, लेकिन मार्केट की फ्लक्चुएशन से निजात पाने के लिए आपको दो वेराइटी पसंद करनी है और तीन या चार टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो आपको, जैसे हमको भी अनुभव है, मुझे 2 रुपये/किलो बेचा था और 120 रुपये/किलो बेचा था, तो ये आपका हो सकता है 40-50-60 हज़ार का एकड़ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि बबर ऐसा करे कि आपका 4 से 5 टन प्रोडक्शन आए और 50 रुपये/किलो बिके, 2-2.5 लाख का एकड़ भी हो सकता है इसमें। और उसके आगे निमेटोड बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होते हैं इससे। और तीसरा कि जैसे इसको ट्रैप क्रॉप की तरह प्रयोग कर सकते हैं, कि जैसे हरी इल्ली को ही आकर्षित करता है। और एक किसान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि खास करके पोमोग्रेनेट यानी कि अनार की खेती करने वाले किसान हैं, जो ऐसा लगाते हैं, दो तीन प्लांट लगाते हैं दो साइड में, मतलब ये लाइन है, ये लाइन है, तो यहाँ पे लगा देते, फिर उस तरफ नहीं लगाते, फिर आगे लगाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कमर्शियल की तरह लगाओ, एक पेड़ के आसपास में 15-20 पौधे लगा दो, वो लाइन में हो सके तो ज्यादा लगाओ, बराबर आपका प्रोडक्शन भी आएगा, मार्केटेबल वॉल्यूम आएगा आपको, कि आप मार्केट में ले जा पाओ उतना वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा। तो आपको मानसून में खर्चा निकल जाएगा बहुत बड़ा। आप ये पपाया में लगा सकते हो, पपाया की बॉर्डर पे, एक कैच क्रॉप की तहत आ जाएगा, क्योंकि पपाया का नॉर्मली लागवड़ जो होती है, नॉर्मल पपाया लगाते हैं मार्च अप्रैल या तो मई में लगाते हैं, तो पपाया छोटा सा रहता है, तो उसके बाजू में आप लगा सकते हो, लगभग एक पपाया के आसपास में लगभग 4 से 5 पौधे 10 पौधे भी लगा सकते हो आप। ये कोई खाद खाता नहीं है, जितना पपाया में डालते हो उसमें 10-15% खाएगा, लेकिन जो निमेटोड के सामने रक्षण करेगा और जो इल्लियों को बचाएगा उतना ही काफी है, तो उतने से आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो खास करके बागवानी जो फसलें हैं उसमें ये एक कैच क्रॉप प्लस ट्रैप क्रॉप की तरह आप उपयोग कर सकते हो। तो इसलिए मुझे गेंदे का जो खेती है बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि किसान को फायदा ही फायदा करवाता है, कि एक एंगल से नहीं, आप मल्टीपल एंगल से देखो, आपको फायदा होता है। कभी ऐसा होगा, किसी किसान का होगा, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, कि 1-2 रुपये/किलो में बेचा और कोई फायदा नहीं हुआ, पूरा 3-4 टन माल था और पूरा हमने 4-5 हज़ार रुपये लिया, कि जितना तो उसमें डाला था उतना भी नहीं आया, लेकिन फिर वो जमीन सुधर जाती है, वो दूसरा बेनिफिट है, वो सब बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए खास करके इसको एज ए सिंगल क्रॉप लोग नहीं करते, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, या तो जैसे मैंने बताया सिंगल क्रॉप करना है तो मल्टीपल टप्पे में, मतलब 1-2-3 टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो किसान भाइयों, खूब खूब धन्यवाद, हमको अच्छी तरह से सुना।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे इस प्यारी सी चर्चा को। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होगी और हमारे किसान साथी जो घर पर बैठे हैं वो इस तरीके की खेती कर अपने व्यवसाय के रूप में इसको ले सकते हैं। और व्यावसायिक तरीके से यदि हम खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे किसान साथियों को फायदा ही फायदा होगा। और अगर वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान साथी इस फसलों को करना चाहते हैं तो जरूर अपने कृषि विस्तार अधिकारी या फिर संबंधित वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में आने वाली फसलों के लिए हम तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में अपनी मिट्टी की परीक्षण भी करा सकते हैं और अपने मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है उसकी भरपाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि हम अब आने वाले समय में हम केमिकल से भरी खादों का इस्तेमाल करते हैं उसको ना करके हम जैविक विधि से अपनी खेती को करें, ताकि अपनी फसल जो उत्पादन होगा कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक कम होगा, लेकिन इसके बाद उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और हमारे साथियों

ये राहत भी मिल जाएगी कि हमें जैविक भरी जो फल या सब्जियां रहती हैं या फूल रहते हैं उनका सेवन हमें करने को मिलेगा। तो हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों एक क्रम में आज भी अपन एक विधा को सुने और विधा को आनंद ले हैं। बा विधा है लांगुरिया। जी हाँ दोस्तों, सो देखो लांगुरिया गीतन को अपन सुनते हैं और इन गीतन को आनंद लेते हैं। सो आओ सबसे पहले गीत सुनते हैं अपन भैया हरदयाल जी के स्वर में के बेंदा ले दे लांगुरिया। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

नौ ने मड़ के नौ दरवाजे के दर्शन कर ले लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ये लांगुरिया गीत को, आनंद लो है दोस्तों। ये लांगुरिया को गा रहे थे भैया दिनेश सोनी जी और संगे गा रही थी संध्या सरगम जी। सो आओ दोस्तों अब एक क्रम में कार्यक्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई लांगुरिया को और लेते हैं लांगुरिया गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

मोरो सुनो डरो लिलार के बेंदा लेदे लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया गीत, अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया हरदयाल वर्मा जी। अब दोस्तों एक क्रम में अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और सुनते हैं अगले साथी की गाय भाई लांगुरिया को। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, देखी शिव की अजब बारात गांव की भग्गा लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ई लांगुरिया को, आनंद लव है ई लांगुरिया गीत को गा रहे थे भैया चतुर्भुज जी। सो दोस्तों अब चतुर्भुज भैया जी की लांगुरिया के बाद आओ सुनते हैं अगले साथी की गाई भाई लांगुरिया को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन भैया के संग में।

0: छमा छमना चेला गुरिया मोरी मैया के दरबार, छमा छमना चेला गुरिया मोरी मैया के दरबार, छमा छमना चेला गुरिया।
1: बिल्कुल दोस्तों, मोरी मैया के दरबार छमा छम नाचे लांगुरिया। अब दोस्तों इनके गीत के बाद फिर से अपन सुनते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई लांगुरिया को।

मोरी चुनरी भईरे भदरंग लांगुरिया लादे चुनरिया जयपुर की। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया गीत अपन सब जन ने सुनो है, ई को आनंद लव है। आप दोस्तों ई लांगुरिया गीत को गारे तो भैया रामकृष्ण कुशवाहा जी। सो दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय हो गए है। सो दोस्तों हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात एक कार्यक्रम में एक बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे जी आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। सो दोस्तों, आप सब जन को जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे? अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होत है, सो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन होवे को समय हो गयो है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।